0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अर्शिता नमस्कार।
1: नमस्कार। 5 जुलाई 2026 की प्रातकालीन पहले फ्लैश न्यूज में आप सब लोगों का स्वागत है। सबसे पहले हम फीफा वर्ल्ड कप से शुरू करते हैं। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस की ओर से कप्तान किलियान एम्बाप्पे ने पेनल्टी पर मैच का एकमात्र गोल दागा और अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला गुरुवार को बोस्टन में मोरक्को से होगा। याद रखें कि मोरक्को ने प्री क्वार्टर फाइनल में समेजबान कनाडा को 3-0 से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश कर लिया है। बजट 2026-2027 पर इबेन साइबर सिटी में युवाओं, उद्यमियों और नीति निर्माताओं के बीच संवाद का आयोजन किया गया। युवाओं ने रोजगार, कैरियर के अवसर और क्रय शक्ति बढ़ाने जैसे मुद्दों पर अपनी अपेक्षाएं सीधे सरकार के प्रतिनिधियों के सामने रखी। बजट 2026-2027 पर आयोजित संवाद सत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की अर्थव्यवस्था पर विशेष चर्चा भी हुई। सरकार ने कहा कि एआई को रोजगार के खतरे की बजाय अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए और मॉरिशस इसे क्षेत्रीय हब के रूप में विकसित कर सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में मॉरिशस ने समावेशी और न्याय संगत डिजिटल

परिवर्तन की वकालत की है। भारत और मॉरिशस ने रोजगार, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई है। फ्रो मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट ने के नेता पोल बेरांजे ने फाइनेंस

0: पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए देश में महंगाई और आर्थिक ठहराव की चेतावनी दी है। और आज 5 जुलाई को क्यूपिप के सैंतेगैज गिरजाघर में तीसरी मैस डिजॉर्टिस का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष प्रार्थना सभा में विभिन्न क्षेत्रों के कलाकार शामिल होंगे और समाज में उनके योगदान को सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान की पूर्व सर्वोच्च नेता को अंतिम विदाई दी जा रही है। तेहरान में फिलहाल उमड़ा हुआ है जन सैलाब। और उधर यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग स्थित एक प्रमुख तेल टर्मिनल और नौसैनिक अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया है। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इन हमलों का उद्देश्य रूस की युद्ध क्षमता को कमजोर करना है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो। चला बढ़ते हैं अब हम मौसम के हाल की ओर।
1: Your weather forecast.
0: हाल आम हालत हमारे इलाके पर हल्की हवा का असर है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है। आमतौर पर सुबह के समय मौसम सुहाना होगा और रात के दौरान भी आसमान साफ रहेगा। पर दोपहर बाद सिवाय उत्तरी इलाकों में बादल विकसित होंगे और रहकर वर्षा होगी। रात के दौरान बादल घिराएंगे और दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटों वाले इलाकों में थोड़ी वर्षा होगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पार सामान्य रहेगा और रात के दौरान स्थिति खराब होगी और दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। रात के दौरान खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। अतिरिक्त जानकारी, एक फ्रंटल सिस्टम से जुड़ा एक जोरदार एंटीसाइक्लोन दक्षिण पश्चिम की ओर से हमारे इलाके की ओर बढ़ रहा है जिसके कारण ठंड हवा का असर हमारे इलाके पर पड़ रहा है। अगले मंगलवार से तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट नोट की जाएगी। और सूर्योदय आज सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:42 पर। इसके साथ ये फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। हमारी रोनम आपकी मुलाकात पुनः होगी ठीक 6:30।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: On the hour, every hour, Radio Marches.

0: ভোর কি বেলা তাজগি ভরি শুরুয়াত।
1: নমস্কার, সুপ্রভাত। आज की ये प्रभात लेकर आए दृढ़ता आपके हृदय में और ठहराव तथा शांत मन के साथ। आज रविवार 5 जुलाई 2026 के इस दिन की शुरुआत करें आप, यही है प्रार्थना हमारी ईश्वर से। भोर की बेला में आइए सुने आर्य सभा मॉरिशस के तत्वावधान में प्रस्तुत आज का वैदिक वाणी कार्यक्रम। और आज का ये कार्यक्रम आप सुनिएगा प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री जी से।
2: लीजिए सुनिए आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वैदिक वाणी।

श्रोताओं, ये मंत्र बहुत ही अच्छा है। यजुर्वेद में, ऋग्वेद में ये मंत्र आता है और हम मानते हैं कि इस मंत्र का जाप करने से हम मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करके अमृत के बंधन में जुड़ जाते हैं। याद रखिएगा, दो प्रकार के बंधन से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है। एक का नाम है मृत्यु का बंधन, दूसरा का नाम है अमृत का बंधन। आप समझते हैं, मृत्यु कहाँ होती है? जन्म और मरण के कारण मृत्यु होती है। और अमरत्व का जो बंधन है, मोक्ष का जो बंधन है, उसमें न जन्म होता है न मरण होता है। इसमें बहुत ही सुंदर प्रार्थना की गई है, त्र्यंबकम यजामहे। त्र्यंबक कहते हैं त्रि, अम्ब और क, अर्थात वह भगवान कैसे हैं। वह इस संसार के उत्पत्ति करने वाले हैं, वह इस संसार के पालन करने वाले हैं और वह इस संसार के संहार विनाश करने भी वाले हैं, लेकिन समय के अनुकूल सब ये काम होते हैं। त्र्यंबक अम्बक कहते हैं, माँ को भी कहते हैं। आप याद रखिएगा, जब माँ छोटे छोटे बच्चों को अपने गोदी में लेकर के और बड़े सुंदर ढंग से उसको लोरी देती है, लोरी देते देते वो बच्चा जैसे सो जाता है, तो वो जो तीन प्रकार की लोरी होती है वो कौन सी है? वो मानो उच्चारण करती है ओम का, जैसे गुनगुनाती है अम उम और म। ऐसा करते करते संसार की मानो सारी माताएं उस ओंकार का उच्चारण करती हुई अपने बच्चों को बड़े प्यार से, ममत्व से सुला देती है। ऐसे ही वह त्र्यंबक क्या करते हैं? परमात्मा हमको जन्म और मृत्यु के बंधन से छुड़ा करके अमृत के बंधन में ले जाते हैं, जहाँ आनंद है, जहाँ मोक्ष है, जहाँ किसी प्रकार का न दुख है न कोई कष्ट है। इसलिए उस त्र्यंबक परमात्मा का हम यजन करें, उसकी संगति करें, उसके विशेषण, उसके पास में जाने से क्या होगा? तो कहते हैं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। हमारे जीवन का सब प्रकार का, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सब प्रकार की उन्नति हमारी होगी। आइए हम इस मंत्र के माध्यम से विचार करते हैं कि हम मृत्यु के बंधन से छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ उपमा अलंकार के माध्यम से बड़ी मीठी मीठी ज्ञानवर्धक बात मानो हर जीव के लिए कही गई है कि हे जीवात्मा, तू मुक्ति के सुख का अधिकारी बना है कि नहीं बना, इसकी पहचान तुझे करनी हो तो सबसे पहले खरबूज फल को अपने जीवन का आदर्श बना। तभी तो कहा है मंत्र में, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय। हे भगवान, मुझे इस जन्म मरण के, मृत्यु के बंधन से छुटकारा दो। जैसे खरबूजा अपने डाली से पक कर अलग होता है, तो आपने देखा होगा खरबूजा जब खरीदते हैं हम तो उसकी पहली पहचान क्या होती है? वो डाली से सर्वथा पृथक हो जाता है, डाली से सर्वथा अलग हो जाता है, तो हम समझते हैं कि वो अब अच्छी तरह से पक गया है। ऐसे ही हमारे जीवन की अंदर की और भीतर की जितनी भी वासनाएं हैं, डिजायर्स हैं, ये जब हम अच्छी तरह से, पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, उन्मूलन हो जाता है। हमारे जीवन के अंदर कितनी प्रकार की अनंत अनंत जन्मों से वासनाएं छिपी पड़ी हैं, वो गुप्त रूप में और सुप्त रूप में हमारे अंतःकरण में विद्यमान है। हम उसको धीरे धीरे निकालने का प्रयास करें। कौन सी वासनाएं? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, और न जाने कितने प्रकार का ईगो हमारे अंतःकरण में बाहर और भीतर, अंदर सब जगह सर्वथा रहता है। वेद का मंत्र ये कहता है, जैसे खरबूज अपने डाली से बिल्कुल अलग हो जाता है, ऐसे ही हम इस प्रकृति के पाशों से सर्वथा वासनाओं को दूर करें। दूसरी पहचान इसमें दी गई है कि मानो जैसे खरबूजा जब पक जाता है तो वो गंध देता है, सुगंध प्रदान करता है। हम कच्चा नहीं खाते हैं, तो गंध का मतलब है ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर भी सत्कर्मों की सुगंधि हो। क्या हम दूसरे के काम आते हैं? क्या हम दूसरे को प्रेम, दया, करुणा, वात्सल्य, ये सब चीज़ देते हैं? गाय का छोटा सा बछड़ा होता है, माँ उसको कितने ममत्व देती है। तो यहाँ गंध का मतलब है कि जैसे खरबूजा डाली से पक करके अलग होता है, लेकिन वो कितनी गंध पे

पहुंचाता। ऐसे ही हमारे मनुष्य जीवन की भी अनेक प्रकार के सत्कर्मों की सुगंधि जब फैल जाए तो हम कह सकते हैं कि हम मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज़ इसके अंदर बताई खरबूजे की उपमा में कि खरबूजे का रंग और रूप हम देखते हैं कि वो पका है कि नहीं है, वो मीठा है कि नहीं है। कहते हैं ना हिंदी में, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर भी हम कुछ परिवर्तन कर रहे हैं कि नहीं, या जैसे थे वैसे ही थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला उसका यदि हम उदाहरण देखें खरबूजे का, तो वो जैसे रस से लबालब भरा हुआ होता है। वो जब हम उसको काटते हैं तो उसके भीतर रस ही रस भरा होता है। ऐसे ही परमात्मा के मानो पास में जाने से व्यक्ति उस रस से प्रभावित होता है। रसो वै सह, इसलिए उपनिषदों में कहा कि केवल भगवान ही रस स्वरूप है, और वह हमें उस रस को हम प्राप्त होकर के सब जीवात्मा एक हो जाते हैं। तो जैसे खरबूजे के अंदर रस भरा है, हमारे जीवन के अंदर भी हम रसों से परिपूर्ण हो। रस ही नहीं होता, खरबूजे के अंदर माधुर्य भी होता है, मिठास भी होता है। ऐ भक्त, तू ये अपने जीवन में देख कि तेरे शरण शरण में आने वाले लोग तेरे जीवन से कितने मधुरता, अर्थात तू उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है। इसलिए हमें कहा है ना, सहृदयम साम्मनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह, अर्थात हम अपने परिवार में कैसे रहें। तो ये बात माधुर्य की है, हमारे जीवन के अंदर मधुरता हो, हमारा जीवन भीतर और बाहर एक हो। एक रूपता की भी बात, खरबूजे को देखते हैं तो वो अंदर से बाहर से एक रूप होता है, ऐसे ही उसकी उपमा दी है। और अगली बात कही है कि उसके अंदर की जो बीज होता है वो भी निकल जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर जो गुप्त और सुप्त रूप से वासनाएं पड़ी हैं, उनको हम ख़त्म करें, समाप्त करें। आपने देखा होगा खरबूजे को यदि आप उसकी फांकों की गिनती करें तो वो 10 होती है। ऐसे ही परमात्मा ने हमको भी 10 प्रकार की फांकें, अर्थात जो हमारा दो हमारे दो हाथ हैं वो 5-5 उंगलियां मानो हमारी 10 फांकें हैं। उन उंगलियों से हम इतने अच्छे अच्छे कर्म करें कि हमारा जीवन जो है वो भीतर बाहर से एक रूप हो। और आप देखते हैं खरबूजे की तरफ हमने यदि अंगुली से इशारा किया तो वो सड़ जाता है। ऐसे ही भक्त के लिए कसौटी ये खरबूज बताता है कि तेरे जीवन के अंदर भी किसी प्रकार की कोई व्यक्ति अंगुली न उठाए। हमारे आप देखते हैं कि उंगली कब उठती है हमारी तरफ, हमारी तरफ उंगली जब उठती है जब हम कोई गलत काम करते होते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि सावधान रहो, अलर्ट रहो। तो यहाँ पर इस वेद मंत्र में भक्त ये प्रार्थना करता है कि परमात्मा उर्वारुकम इव बंधनात्, अर्थात इस जन्म के बंधन से मुझे उसी तरह से अलग करो जैसे खरबूजा डाल से पक करके सर्वथा अलग हो जाता है। तो क्या मतलब हुआ इसका, ये उपमा खरबूजे के ही क्यों दी? तो मतलब भक्त को अपनी कसौटी के पर कस के कह देखना चाहिए कि जैसे उसकी पहली पहचान क्या है, वो बिल्कुल डाली से जब अलग हो जाता है, उसकी गंध है, उसका रंग रूप है, उसका रस है, उसका माधुर्य है, उसका एक रूपता है, उसके अंदर बाहर की वासनाएं मानो उसके जो बीज है वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, उसकी 10 फांके हैं, उसकी तरफ का इशारा है। ये हमें खरबूजे से कुछ बातें सीखनी चाहिए। इसीलिए तो भगवान ने मानो सृष्टि के आदि में यह इतना पवित्र फल का उदाहरण देकर के समझाया कि तू यदि इस मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है तो अपने जीवन का आदर्श उस खरबूजे को बनाना, और उसके जीवन की जो जो विशेषताएं हैं वो विशेषताओं को तुम दूर करते रहना, धीरे धीरे देखना तुम किसी के काम आने वाले हो कि नहीं, तुम्हारे जीवन के सत्कर्मों की सुगंधि आ रही कि नहीं, तुम्हारा जीवन भीतर और बाहर एक जैसा है कि नहीं। बहुत लोग अंदर से कुछ होते हैं बाहर से कुछ होते हैं, हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। एक रूपता हमारी बनी चाहिए। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, हम जो कुछ वाणी से बोले हमारे कर्म में भी वो सब चीज़ हो, हमारा जीवन सब प्रकार के रसों से भरा हुआ हो, सब प्रकार की मधुरता हमारे जीवन के अंदर हो, कोई भी ऐसी चीज़ न हो जो हमें इस प्रकृति के बंधन में ही बांधे रखती हो। इसलिए भक्त की ये पहचान है कि आओ, तुम्हें यदि अमृत

0: के बंधन से जुड़ना है और मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना है तो अपना आदर्श, अपना आइडियल, उस खरबूज को, फल को बनाना, उसके जीवन की जो जो खासियत है वो तुम्हारे जीवन के अंदर भी आनी चाहिए। और यहाँ कहा, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय। बार बार भक्त प्रार्थना करता है भगवान से, मृत्योर्मुक्षीय, मुझे मृत्यु के बंधन से छुड़ाओ। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही गई, मामृतात्, जो अमृत का बंधन है, ईश्वर का जो वरदान है, आशीर्वाद है, मोक्ष का जो साल्वेशन, मुक्ति जिसको कहते हैं, इसके लिए बार बार ऋषियों ने प्रार्थना की है, मामृतात् मामृतात्। माँ का मतलब होता है नहीं, अमृत का मतलब है इमॉर्टिलिटी, अर्थात उस अमर सुख को हम प्राप्त कर लें जहाँ न जन्म होता है, जहाँ न मृत्यु होती है, न जहाँ सुख है, न दुख है, न हानि है, न लाभ है, और ईश्वर के अनंत आनंद में ही हम विचरण करते हैं। उसी को हमारे दार्शनिक विद्वानों ने कहा कि उसको मुक्ति कहा है, उसको साल्वेशन कहा है, उसको मोक्ष कहा गया है। इस वेद मंत्र में भी यही प्रार्थना की गई है। बार बार भक्त कहता है मामृतात् मामृतात्, अर्थात हे परमात्मा, मुझे अपने समीप आनंद में हमें बुला लो, हम उस अमृत के बंधन में जुड़ जाएं। बार बार ये प्रार्थना है। तो यदि हम मृत्यु के बंधन से छूटना चाहते हैं, हम जन्म मरण के दुख से छूटना चाहते हैं, तो हमें अपना आदर्श उस खरबूजे को बनाना चाहिए, उस फल को बनाना चाहिए, उसकी जो खासियत है, क्वालिटीज़ हैं, वो हमारे जीवन के अंदर उतरनी चाहिए। बहुत ही प्यारा मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, खरबूज जैसे डाली से पक जाता है, उसके गुणों को मैं भी आदर्श में अपने जीवन में उतारता हुआ, मैं भी अपने जीवन में उसको बनाता हुआ, उतारता हुआ, और मैं आपके अमृत के बंधन से जुड़ने की इच्छा करता हूँ। संसार के सब लोगों की यही इच्छा है कि हम मोक्ष सुख आनंद को, ऐसा आनंद जो कभी मिटता न हो, भौतिक जीवन में भौतिक सुखों की समाप्ति करें और हम उस त्र्यंबक परमात्मा को, उसकी संगति करें, उसके शरण में जाए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। श्रोताओं, इस मंत्र को बार बार सुना करो, बार बार चिंतन किया करो, बार बार इसका मनन किया करो, अपने जीवन को सुखमय बनाएं, शांतिमय बनाएं, आनंदमय बनाएं। जीवन का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम कैसे प्राप्त कर सकें, वो इस मंत्र के अंदर बताया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री आप सब श्रोताओं का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। ओम शम, ओम शम।
1: अभी आप सुन रहे थे आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वैदिक वाणी,
2: और आज आप सुन रहे थे प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री जी को।
3: एमबीसी रेडियो 24 hours a day।
2: इस समय 6:22 हुए हैं। चलिए जरा पढ़ते हैं हम कुछ विज्ञप्तियाँ आपके लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि इन इन इलाकों में मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। साइडसन रोड फिनिक्स में आज रविवार 5 जुलाई को साइडसन रोड मोसिलमगोबर्दन फ्लाटसनासी के एक भाग में तथा आसपास के इलाकों में आज रविवार 5 जुलाई को सुबह 8:30 से शाम के 4 तक बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर कोयगाची बॉप्योले और तेहूज के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि बॉमोशों मदमाजेलो बगतलेन लक क्वाज़े मोंटाइलोंग मोसिलमा बसावन मोसिलमा तारा सिटी डुल बाटिस लेन मोसेलमा शेख दाऊद, मोसेलमा शावरी और मोसेलमा रिचवुड तथा आसपास के इलाकों में

आज रविवार 5 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सीबी ग्लेनपार्क के निवासियों को सूचित करता है कि मोसिलमो एडू नंबर 1 और नंबर 2 तथा आसपास के इलाकों में आज रविवार 5 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से दिन के 2 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। लखेमा के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि सिमेट्री रोड सियाकोंस्टांस एनएचडीसी वाइन्योल एमएसआ सियाकोंस्टांस विलाज निकोलियर रोड मोसिलमो फ्रांगीपेन रेजिडेंस सेंट कैथरीन टेम्पल लेन और रेजिडेंस लखेमा तथा आसपास के इलाकों में आज रविवार 5 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से दिन के 3:30 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। रिवियर जोहोपा के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि रॉयल रोड कोकैम्बो विनर्स फुकियाबक्स और एमसीबी इलाकों में तथा आसपास के इलाकों में आज रविवार 5 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से शाम के 4:00 बजे तक मरम्मत कार्य होंगे। इस वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर पुतखदो हमलेट के निवासियों को तथा लेस्पेरांस पीतों के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि आज रविवार 5 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से दिन के 3:00 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही इन सभी इलाकों में काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। तो ये थी कुछ विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। ये है रेडियो मॉरिशस। इस समय सुबह के 6:25 हुए हैं और हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक कुछ भाव भरे गाने, ऐसे भाव जो आपके मन को दृढ़ बना दे, आपके मन में विश्वास पैदा कर दे और उत्साह पैदा कर दे। चलिए ज़रा किशोर कुमार की आवाज़ का ये गाना सुनते हैं और सुनते हैं किस तरह से ज़िंदगी में जो भी होता है उसको एक्सेप्ट कर लें, उसको मान लें और इन्हीं बातों के साथ हम अपने जीवन को एक सही राह पर ले चलें।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। बजट 2026-2027 पर एबेन साइबर सिटी में युवाओं, उद्यमियों और नीति निर्माताओं के बीच संवाद का आयोजन किया गया। युवाओं के रोजगार, करियर के अवसर और क्रय शक्ति बढ़ाने जैसे मुद्दों पर अपनी अपेक्षाएं सीधे सरकार के प्रतिनिधियों के सामने रखी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में मॉरिशस ने समावेशी और न्यायसंगत डिजिटल परिवर्तन की वकालत की है। भारत और मॉरिशस ने रोजगार, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। कौमी नेता प्रोग्रेसिस के नेता पुल बेरांजे ने फाइनेंस बिल 2026-2027 को आम परिवारों और लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए नुकसानदायक बताया है। उन्होंने सरकार पर सार्वभौमिक पेंशन के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए देश में महंगाई और आर्थिक ठहराव की चेतावनी दी। आज 5 जुलाई को क्यूबिक के सेंटेरेस गिरजाघर में तीसरे मैस दिजोचिस का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष प्रार्थना सभा में विभिन्न क्षेत्रों के कलाकार शामिल होंगे और समाज में उनके योगदान को सम्मानित किया जाएगा। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता को अंतिम विदाई, तेहरान में फिलहाल उमड़ा जन सैलाब। नमस्कार, 5 जुलाई रविवार का दिन, इस प्रातकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। अब हम सुर्खियों का विस्तार करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानीय स्तर पर। बजट 2026-2027 को लेकर कल एबेन साइबर सिटी में विश्वविद्यालय के छात्रों, युवा उद्यमियों और नीति निर्माताओं के बीच एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर जूनियर मिनिस्टर धनेश्वर दामरी, फैब्रिस डेविड तथा सांसद काविराज रूप मौजूद रहे। प्रतिभागियों ने रोजगार सृजन, करियर में आगे बढ़ने के अवसर, क्रय शक्ति में सुधार तथा युवाओं से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी अपेक्षाएं और सुझाव सीधे उनके सामने रखे। इस पर चंद नौजवानों, विशेषकर अदनान सुबाची, निहाल गदा और नाओमी अली विंग को सुनते हैं।
2: नौजवान होने की हैसियत से हम मॉरिशस में अपनी अहमियत महसूस करना चाहते हैं। ख्वाह छात्र हो या नया कर्मचारी हो, हम प्राथमिकता की मांग नहीं बल्कि महत्व चाहते हैं।

0: global basis en tant qu'un aging population, mais aussi que jeune.
1: मेरी यही उम्मीद थी कि हमारा बेहतर प्रतिनिधित्व हो, हमें ये दिखे कि हमारे लिए क्या क्या किया जा रहा है, ताकि हमें भरोसा मिले कि हम देश में ही रहें, हम अपने देश में अहमियत पाना चाहते हैं.
2: Moi, attendre qui est quand nous finit l'université, qui ne peut capable trouver un travail parce que le salaire minimum à Maurice, il pas suffit parce que nous-mêmes en tant que jeunes. Nous à l'université, nous pas travail et nous besoin, comment dire, nous manque parents qui faisaient subvenir à nos besoins.
3: बजट 2026-2027 को लेकर आयोजित इस संवादात्मक सत्र का एक अन्य प्रमुख विषय भविष्य की अर्थव्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका रहा. ये सवाल भी उठाया गया कि क्या एआई रोजगार के लिए खतरा बन सकता है. इस पर वित्त मंत्रालय के जूनियर मिनिस्टर धनेश्वर दामगी ने कहा कि जोखिम को अवसर में बदलना जरूरी है. उनके अनुसार मॉरिशस के पास ये अवसर है कि वह अफ्रीका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े वितरण और सेवाओं के क्षेत्र में एक क्षेत्रीय हब के रूप में स्थापित हो. उन्होंने कहा कि ये तकनीकी क्रांति देश के लिए विकास और युवाओं के लिए नए अवसरों का बड़ा माध्यम बन सकती है. जूनियर मिनिस्टर धनेश्वर दामगी को सुनते हैं, विवरण सुमेरा अकबरिन का है.
4: Si nous limitons nous à l'île Maurice, l'IA, il y en a beaucoup de risques.
1: अगर हम सिर्फ मॉरिशस तक सीमित रहेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत खतरे हैं. दो चीजें बहुत जरूरी हैं. मॉरिशस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जगह बना ली है. अफ्रीका में मॉरिशस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सप्लाई केंद्र बन गया है.
4: Dans l'Afrique. Et uniquement si Maurice, mon opinion personnelle, si Maurice nous réussit à intégrer nous avec l'Afrique, si l'île Maurice.
1: मेरी राय है कि अगर मॉरिशस अफ्रीका के साथ चले, अगर हम IA का केंद्र बनेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट होगा.
4: Africain de l'IA, la l'IA devient un grand asset. Risque devient un asset.
3: पिछले जून में जिनीवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान मॉरिशस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर अधिक समावेशी और न्यायसंगत डिजिटल परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया. श्रम एवं औद्योगिक संबंध मंत्री गिज़ा उतिम ने रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता भी रेखांकित की. प्रस्तुत है ये रिपोर्ट, विवरण सुमेरा अकबरली का है.
1: श्रम मंदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना रही है और नौकरी के तरीके को बदल रही है. कर्मचारियों और मालिकों के लिए नई चुनौतियां पैदा हो गई हैं. जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 114वें सत्र के दौरान श्रम और औद्योगिक संबंध मंत्री रिज़ा उतिम ने कामगारों के प्रशिक्षण और उनकी काबिलियतों को निखारने की अहमियत पर जोर दिया, ताकि वे श्रम मंदी की नई हकीकतों में बेहतर तरीके से ढल सके. मंत्री रिज़ा उतिम ने सामाजिक डायलॉग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की जरूरत पर भी बल दिया, ताकि नौकरी के माहौल से जुड़ी डिजिटल चुनौतियों का सामना किया जा सके तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरक्की को समझा जा सके. इस सम्मेलन के दौरान श्रम मंत्री ने भारतीय राज्य श्रम मंत्री शोभा करंदलाजे से भी मुलाकात की. मॉरिशस और भारत के बीच श्रम, पेशवराना प्रशिक्षण, काबिलियतों के विकास और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की दिशा में बातचीत हुई. मॉरिशस ने भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म ई श्रम और नेशनल कैरियर सर्विस में दिलचस्पी जाहिर की. भारत ने फिर से पुष्टि की कि वो मॉरिशस के साथ अपनी डिजिटल महारत बांटने के लिए कटिबद्ध है.
3: फाइनेंस बिल 2026-2027 का आम परिवारों और लघु एवं मध्यम उद्यमियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. ये दावा फोमी लीतों प्रोग्रेसिस के नेता पोल बेरांजे ने कल आयोजित एक प्रेस वार्ता में किया. उनका कहना है कि मॉरिशस स्टैगफ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने और आर्थिक वृद्धि ठहर जाने की स्थिति की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम पर सार्वभौमिक पेंशन के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया. इसके अलावा पूर्व उप प्रधानमंत्री ने कहा कि पब्लिक गैदरिंग और वर्क्स एक्ट को इस फाइनेंस बिल का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए. उनको सुनते हैं.
5: पेंशन प्रणाली में बदलाव को लेकर बुरबेहोंजे ने कहा कि प्रस्तावित प्रणाली में अनिश्चितताएं हैं. उन्होंने फाइनेंस बिल के परीक्षण के लिए गठित मंत्रालय समिति पर चर्चा की.
6: C'est maintenant qu'ils ont qui ira Moulin pour présider un comité interministériel.
5: अब जाकर नवीन रामगुलाम एक मंत्रालय समिति की अध्यक्षता करेंगे। कम से कम संबंधित लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए थी। पेंशन फाइनेंस बिल का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले बजट कदम प्रस्तावित करें और बाद में समय लेकर चर्चाओं के बाद पेंशन सुधार लाएं। मीन्स टेस्ट हटाए जाने के संबंध में पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का मानना है कि कई पहलुओं पर स्पष्टीकरण बाकी है। सिर्फ मीन्स टेस्ट समस्या नहीं, 60 से 65 साल के बीच और उसके बाद भी कैसे पेंशन निर्धारित होगा। राजनीति को लेकर पुर्बे हांजी ने फोमिलिटन प्रोग्रेसिव के भविष्य पर बात की। उन्होंने कहा कि ये दल ज्यादा तेजी से हस्तक्षेप कर सकता है। उन्होंने कहा कि वे कई गैर संसदीय संगठनों के साथ संपर्क में हैं।
3: रिपाई आर्य समाज के सदस्य कल अपने नए आर्य मंदिर के उद्घाटन के लिए एकत्र हुए। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने एक विशेष समारोह में भाग लिया, जहां वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया गया और यज्ञ का भी आयोजन किया गया।
7: यहां पर यज, महायज, बहुत सी ऐसी गतिविधियां करेंगे क्योंकि सभी वर्ग के लोग के इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि उनको ट्रेनिंग देना धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, समाज के बारे में अवगत करना। इन सब बातों के लिए हमने इस आर्य मंदिर का निर्माण किया।
3: तीसरे मेस डिजोचिस का आयोजन आज 5 जुलाई सुबह 11 बजे क्यूपिप स्थित पावास सेंटेरेस में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन पोर्ट लुइस जोसेस और यूनियन ऑफ ऑटिस के सहयोग से किया जा रहा है। इस विशेष प्रार्थना सभा की अध्यक्षता मोनसिनियर जो मिकेल जोन करेंगे। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों के साथ साथ वे सभी लोग शामिल होंगे जो मॉरिशस के समाज में कलाकारों के योगदान को सम्मान देना चाहती हैं। 2024 में शुरू की गई मेस डिजोचिस पहल का उद्देश्य चर्च और सांस्कृतिक जगत के बीच संबंधों को और मजबूत बनाना है। यह आयोजन समाज में कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने के साथ साथ आपसी भाईचारे और एकता की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। फ्रांस के लोकप्रिय गायक क्रिस्टोफर माए अपनी अंतर्राष्ट्रीय संगीत यात्रा के तहत एक बार फिर मॉरिशस आ रही हैं। सिटाडेल में अपने पहले कंसर्ट के लगभग 20 साल बाद वे 21 फरवरी 2027 को ट्रियानो कन्वेंशन सेंटर में मंच पर प्रस्तुति देंगे। क्रिस्टोफर माए अपने चर्चित गीत उन सताश जेले से लोर्स बुके दे रोज और लॉम्पेजुसा के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय है। कंसर्ट की टिकट ₹900 से शुरू होती है और उतायु के माध्यम से उपलब्ध किए जा सकती है। अब बात करें फुटबॉल विश्व कप के बारे में, यानी फीफा विश्व कप 2026 के बारे में। राउंड ऑफ 16 मुकाबले में फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस की ओर से कप्तान किलियान एम्बापे ने पेनल्टी पर मैच का एकमात्र गोल दागा है और अब पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला गुरुवार को बोस्टन में मोरक्को से होगा। मोरक्को ने राउंड ऑफ 16 में समेजबान कनाडा को 3-0 के स्कोर से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया है और अब राउंड ऑफ 16 में ही अगले मैच जो निर्धारित है आज रात 12 बजे ब्राजील खेलेगा नॉर्वे के खिलाफ, मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड होगा कल सुबह 4 बजे और कल रात 11 बजे पोर्चुगल खेलेगा स्पेन के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही सुर्खियों में हम बात कर रहे थे कि ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी के राजकीय अंतिम संस्कार की औपचारिक

शुरुआत कल तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में हुई। अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग वहां पहुंचे। आज धार्मिक और राजनीतिक महत्व वाले पवित्र स्थल पर विशेष नमाज अदा की जाएगी। 6 दिनों तक चलने वाले इन अंतिम संस्कार समारोहों के आयोजकों ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि आज की नमाज का नेतृत्व कोई वरिष्ठ धार्मिक नेता करेगा या खामेनेई के परिवार का कोई सदस्य। इस बीच अली खामेनेई के बेटे और उत्तराधिकारी आयतुल्ला मुज्तबा खामेनेई अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। युद्ध के पहले दिन 28 फरवरी को हुए अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जबकि मुज्तबा खामेनेई भी उस हमले में घायल हुए थे। फिलहाल वे केवल अपने नाम से जारी आधिकारिक बयानों के माध्यम से ही संदेश दे रही है। और उधर यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित एक प्रमुख तेल टर्मिनल पर रात भर ड्रोन हमला किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये ऐसा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है जिससे रूस को युद्ध के लिए आर्थिक संसाधन प्राप्त होते हैं। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि इस क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख रूसी नौसैनिक अड्डे को भी निशाना बनाया गया है। वहीं सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर अलेक्जेंडर बेगलोव ने स्वीकार किया है कि शहर पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला हुआ और तेल टर्मिनल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि उनके अनुसार इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बढ़ते हम मौसम के हाल की ओर। आम हालत हमारे इलाके पर हल्की हवा का बहाव है, अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है। आमतौर पर सुबह के समय मौसम सुहाना रहेगा और दिन के दौरान भी मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय दोपहर बाद उत्तरी इलाकों में बादल विकसित होंगे और रहकर वर्षा होगी। रात के दौरान बादल घिलाएंगे और दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों में थोड़ी वर्षा होगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पास सामान्य रहेगा और रात के दौरान स्थिति खराब हो जाएगी। दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ज्वार उठेंगे। रात के दौरान खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा यानी सेंट्रल प्लेटू पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। अतिरिक्त जानकारी, एक फ्रंटल सिस्टम से जुड़ा जोरदार एंटीसाइक्लोन दक्षिण पश्चिम की ओर से हमारे इलाके की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारे इलाके पर ठंड हवा का असर पड़ रहा है। अगले मंगलवार से तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी नोट की जाएगी। आज सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:42 पर।

0: इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है और कंसल पर हमारे सहयोगी कादर का भी, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं अब हम शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

Shok sa macha sunye. Avenue des Alouettes, morcellement sudna, katrebonme. Avenue des Alouettes, morcellement sudna, katrebonme. Tirasi salaki, 83 years old, ki shi deunat sunatan, shi deunat sunatan, shi deun pai suresh ke naam se blogzata chante thi. Kimriti ho gayi hai unki arthi, aaj 2:30 baje unki patni, Shrimati Indurani, sunatan ke ghar, morcellement sudna, katrebon se uthakar antim sanskar ke liye, Gandhi Palma, shamshan bhoomi le jai jayegi, cremation today, 2:30 PM. Tagole la Florame, 44 साल की, 44 years old की, श्री शक्ति मधु, जिन्हें शक्ति के नाम से लोग ज्यादा जानते थे और जो देवानंद मधु की बेटी थी, की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थ थी आज सुबह 11:45 पर उनकी पत्नी श्रीमती काजल मधु के घर लाफलोगा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गौवाक शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुडे एट 11:45 AM. Saint-Hilaire-Sangoulette में 63 साल के

शुभ समाचार एक बार फिर सुन लेती हैं। रॉयल रोड रिवियरा डी गाली में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड के श्री संजय आपादू जी अंजीतन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर रिवियरा डी गाली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। पुतिश में बेले रिवियर सेश में पुतिश में 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड के श्री सीवन चेरा सिंह श्री सेवन चितलाई सिंह जिन्हें बाबू के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज बाद में उठाई जाएगी उनके भाई कृष्णा चितलाई सिंह के घर से। रायरोड पुची रिविया में ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं। कू एवेन्यू विक्टोरिया कैटरबोन में 61 साल की 61 ईयर्स ओल्ड की श्री लता चातू सिंह पैदाश नाम बोईरो जिन्हें लता के नाम से भी ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 12:15 पर लाशापेला और दौंदे मुगा पुचित रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 15 PM। नारद रोड पुतिरा फ्रेमे 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड के श्री हेमराज दशरथ जिन्हें विजय के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके बेटे संदीप दशरथ के घर पुतिराफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोमास्कार पुतिराफ्रे की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टी डी आज 10 AM। सिबालक लेन वाकवा में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री रोहित बहादुर जिन्हें राधेव मौसा के नाम से हम लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10:30 उनकी पत्नी श्रीमती प्रेमिला बहादुर के घर वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोमामेल की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10:30 AM। कालीमाई रोड रिविया जोरोपो में 19 साल के 19 ईयर्स ओल्ड के श्री अजागेन रंगासामी जिन्हें अविसन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी उनके पिता सिवियन रंगासामी के घर से बाद में उठाई जाएगी। क्रिमेशन आफ्टरवर्ड्स। मोसेल मोरामफल बोआमोंग प्लेंडी पापाई में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री इंदरदेव लक्ष्मण प्रसाद जिन्हें आनुस के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके घर बोआमोंग प्लेंडी पापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडिया 10 AM। बेंगाली रोड बुसोंज में 71 साल की 71 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बिदवंती मितन जिन्हें माला के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2 बजे उनके घर बुसोंज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई सैपिया बॉम्ब शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडिया 2 PM। जानकी रोड पुत्रोदो विलाज में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बृहस्पति राम जिन्हें सत्या के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनकी बेटी सीता जमक के घर पुत्रोदो विलाज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। एवेन्यू जीवनाराइन पाल्मा कैटरबोन में 59 ईयर्स ओल्ड के श्री सूर्यदत्त लखन जिन्हें अशोक औपोतिया के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 9:30 उनकी पत्नी श्रीमती पूनम लखन के घर पाल्मा कैटरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 9:30 AM। सिमिचिया रोड प्लेन मान्यो में 36 साल के 36 ईयर्स ओल्ड के श्री वितिश बुधन जिन्हें निश्लय के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सोमवार को शाम 4:30 उनकी माँ संध्या गापू जी के घर

प्लान मानी उसे उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 4:30 PM। कैमेलिया स्ट्रीट टेरासों पॉइंट साबल में, कैमेलिया स्ट्रीट टेरासों पॉइंट साबल में 84 साल की 84 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती परमालंगादी पाम्बेन, श्रीमती परमालंगादी पाम्बेन जिन्हें रामास्वामी के नाम से लोग पैदाशी नाम रामास्वामी और जिन्हें विनोदा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे मुगा पिछतविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले वाली दीपात की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। नोवेल फ्रांस विलेज हॉल के पास सावान रो नोवेल फ्रांस में 44 साल की 44 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सोमा देवी भोला, श्रीमती सोमा देवी भोला पैदाश नाम तिलक और जिन्हें सोमा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 12 बजे उनके घर नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रणमान्यों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। हॉलीवुड नंबर एक वाकुआ में 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड के श्री गुरुदत्त दूधी जिन्हें मनन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके भाई सुनील दूधी के घर वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थौमा मेल वाकुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रुथ पाल्मा कैटरबोन में 32 साल के 32 ईयर्स ओल्ड की श्री दिविज अबनाराम जिन्हें दिविज के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 4:30 बजे उनके पिता बड़ी अबनाराम के घर कैटरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 4:30 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: रविवार 5 जुलाई को सुबह 8:30 बजे हाईलैंड्स राजपूत बाल शिक्षा मंदिर, जो नादेस रोड हाईलैंड्स फिनिक्स में पाया जाता है, एक यज्ञ का आयोजन कर रहा है।
3: सुबह के 6:56 और 20 सेकंड हुए हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़। सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। उम्मीद के मुताबिक फ्रांस और मोरक्को पहुंच गए विश्व कप के क्वार्टर फाइनल राउंड में, यानी अब क्वार्टर फाइनल में इन दो प्रबल दावेदारों के बीच जमकर मुकाबला होगा। फ्रांस वर्सेस मोरक्को, जो जीतेगा वो विश्व कप विजेता बन सकता है। बड़ा ही उमदा फुटबॉल प्रदर्शन कल रात भी दो दो मैचों में। सबसे पहले मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से परास्त किया। कनाडा जो सह मेज़बान देश है, प्रथम भाग में खेल की शुरुआत में कनाडा ने एक अद्भुत खेल प्रदर्शन का उसने तोहफा दिया मोरक्को को, लेकिन अंततः मोरक्को का अनुभव काम आया। क्लिनिकल फिनिश कह सकते हैं मोरक्को की ओर से, यानी प्रथम भाग में कोई भी गोल न बन पाया, मुर्गा बना के रखा, लेकिन सेकंड हाफ में उनाही का के दो दो गोल, 50वें मिनट पर एक पहला गोल, फिर 82वें 82nd मिनट पर इसी उनाही ने ब्राहिम जाज के पास पर एक और सुंदर गोल स्कोर किया। ब्राहिम जाज ने कमाल का फुटबॉल प्रदर्शन किया, जाज के ही पास पर दो दो गोल बने, और आखिर में जब कनाडा दबाव डालने लगा था कम से कम एक गोल कम करने के लिए, तभी राहिमी ने एक और गोल स्कोर किया इंजरी टाइम के 8वें मिनट पर, यानी कि 98वें 98 मिनट।

पर। सो गोल बने 50वें, 82वें और 98वें मिनट पर। कनाडा 0 मोरक्को 3, अशरफ हकीमी का प्रदर्शन काबिले तारीफ कह सकते हैं। सो मोरक्को एक प्रबल दावेदार बन चुका है, कल रात उसकी जीत हुई प्रथम मुकाबले में। फिर आज सुबह जो मैच समाप्त हुआ उसमें फ्रांस को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जहां मैच आसान लग रहा था मैच से पहले, वहीं पर पराग्वे ने फ्रांस को एक भी शॉट ऑन टारगेट करने नहीं दिया। प्रथम भाग में, फर्स्ट हाफ में कोई भी शॉट नहीं रहा। हालांकि किलियान एम्बापे ने काफ़ी कोशिशें की। फिलाडेल्फिया स्टेडियम में 68,000 फुटबॉल फैंस के सामने, समर्थकों के सामने एम्बापे ने 70th मिनट पर पेनाल्टी पर जाकर फ्रांस को 1-0 से जितवाया। बस एक पेनाल्टी, वो भी देजिरे ड्यूए के मैदान पर उतरने के बाद, तब जाकर थोड़ा दबाव पड़ा और उसको गिराया। किलियान एम्बापे ने इस वर्ल्ड कप का अपना 7वां गोल स्कोर किया, बराबरी पर है वो भी लियोनेल मेसी से। लेकिन ऑल टाइम टॉप स्कोरर में मेसी अभी उससे एक गोल ज़्यादा है वर्ल्ड कप के इतिहास में। सो किलियान एम्बापे ने फिर गोल स्कोर किया, पराग्वे 0 फ्रांस 1। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से होगा। आज रात 12 बजे ब्राज़ील के लासेलेसाओ मैदान पे उतरेगा ब्राज़ील वर्सेस नॉर्वे। इधर भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, और अर्लिंग हैलैंड इधर से ब्राज़ील में। अब देखना है कि क्या तीन चार मैचों के बाद ब्राज़ील अपना प्रदर्शन और बेहतर कर पाएगा। आज रात 12 बजे ब्राज़ील वर्सेस नॉर्वे। फिर कल सुबह 4 बजे सुगेजेव, इसको किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड कल सोमवार की सुबह 4 बजे, जल्दी उठना है, सवेरे वाली गाड़ी से उठ खड़ा होकर इंग्लैंड को समर्थन देना है, इंग्लैंड को सपोर्ट चाहिए। क्योंकि उधर मेक्सिको जो सह मेज़बान देश है, हर संभव कोशिश कर रहा है कि इंग्लैंड को परेशान करे। इंग्लैंड को तंग करने के लिए उनके होटल के सामने मेक्सिको के फैंस रात दिन सुबह शाम खड़े हैं और तंग कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। सो मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड कल सुबह 4 बजे ये मैच खेला जाएगा। और कल ही रात 11 बजे पोर्चुगल का मुकाबला स्पेन से, ये भी एक फाइनल से पहले एक और फाइनल है, पोर्चुगल वर्सेस स्पेन कल रात 11 बजे। इतना सब कुछ वर्ल्ड कप को लेकर। क्रिकेट में आपको बता दें कि भारतीय टीम की हार हुई कल, इंग्लैंड ने उसे दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने हरा दिया 4 विकेट से भारत को। भारतीय टीम ने अपनी पारी में जब 190 रन बनाए, और इसमें वैभव सूर्यवंशी को अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका दिया गया उसको, लेकिन उसने केवल 14 रन बनाए जिनमें से 2 छक्के भी रहे। सबसे अधिक रन भारतीय टीम की ओर से रहे ईशान किशन की ओर से, जिसने 49 रन बनाए। और जब इंग्लैंड की टीम ने खेलना शुरू किया तब 5 रनों के बाद 2 विकेट गिर चुके थे जल्दी, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड की टीम संभल कर जीत गई 4 विकेट से। बेथेल ने 76 रन बनाए, वो भी नॉट आउट। तो इतना सब कुछ क्रिकेट को लेकर। क्रिकेट में ही अगला मैच भारत और इंग्लैंड के बीच इसी मंगलवार को खेला जाएगा। और टेनिस में भी बड़े बड़ों की हार हो रही है। वर्ल्ड नंबर यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन इगा स्वियातेक की कल हार हुई। आज विंबलडन में ही नोवाक जोकोविच, 39 वर्षीय नोवाक जोकोविच का मुकाबला रोमान साफियोलिन से होगा। रूसी खिलाड़ी है ये, अंडरडॉग कह रहे हैं उसको। सो नोवाक जोकोविच क्या उसको हरा पाएगा। अरीना सैबलेंका का मुकाबला आज नाओमी ओसाका से है। यानिक सिना खेलेगा शिंटारो मुची जुकी के विरुद्ध, जबकि जेसिका पिगुला का मुकाबला इवा जोविच से है। कल के मैचों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी गिर पड़ी। इगा स्वियातेक को हराया अलेक्जेंड्रा याला ने 7-6 और 6-2 से। मैडिसन कीज की भी जीत हुई। ग्रिगो डिमिट्रोव ने मैथियो बेरेटिनी को आउट किया, और एलिज मैथेन ने वर्ल्ड नंबर 2 एलेना रायबाकिना को 7-6 और 6-1 से आउट किया। बात करें फॉर्मूला 1 मोटो रेसिंग चैंपियनशिप की, आज ब्रिटिश

ग्रैंड प्री लगने वाली है सिल्वरस्टोन ट्रैक पर। सो कल आज एक रिकॉर्ड भीड़ की उम्मीद की जा रही है, 180,000 फैंस आज सिल्वरस्टोन ब्रिटिश ग्रैंड प्री रेस देखने निकलेंगे। इसमें कल के का जो आखिरी की जो रेस थी, आखिरी रेस पोल पोजीशन के लिए, उसमें किमी अंतोनेली पहले स्थान पर आया है। ब्रिटिश ग्रैंड प्री में आज वो रेस शुरू करेगा, वो अभी

आगे हैं जॉर्ज रसेल अपने मर्सिडीज में और किमी एंटोलिनी के पास अभी 179 पॉइंट्स है। सो आज कल फ्रांस और मोरक्को की जीत हुई, आज रात 12 बजे ब्राज़ील वर्सेस नॉर्वे, फिर कल सुबह 4 बजे भूलेगा नहीं मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड। देखते रहिए और सुनते रहिए, नमस्कार और शुभ दिन।

0: On the hour, every hour. Radio Mauritius.
1: आइए जानते हैं NBC Play पर New World Sports Pack में सब्सक्राइब करने का तरीका. Step 1. सब्सक्राइबर को पहले NBC Play ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में. अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर MIPS पेमेंट पोर्टल. स्टेप 2. अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस. एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप. सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप. अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा. ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी. यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे. और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा. ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन. तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द NBC Play एप्लीकेशन. अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा NBC Play होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स. ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800.
2: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर.
3: नमस्कार, अभी 7:07 हुए हैं. बेशक आप रेडियो मॉरिशस पर हमारे साथ हैं. ये है रेडियो मॉरिशस, आप लोगों के मनोरंजन के लिए, आप लोगों की इस सेवा में हम है सुरेखा आपका साथ दे रहे हैं. और जहाँ भी होंगे आप खुश रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे, यही हमारी उम्मीद है. आप अपनों के दिलों में जगह बनाए रखेंगे, हर किसी की दुआओं में आप शामिल रहेंगे, यही है हमारी उम्मीद. और वैसे भी यकीन और दुआ नज़र नहीं आते, मगर नामुमकिन को मुमकिन बना ही देते हैं. सो आप पर हर किसी को यकीन रहे, आपका नाम हमेशा दुआओं में शामिल रहे. लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सुबह का नजराना. और ये नजराना जो सुबह का होता है, सबसे बड़ा नजराना होता है जो हर सुबह आपको मिल जाती है. बस ऊपर वाले को धन्यवाद देते हैं कि ये भी सुबह बहुत ही हल्की सी, प्यारी सी, शांतिमय रहे और आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत ही मंगलमय रहे. चलिए सुबह का नजराना प्रोग्राम में आपको हम सुनवाते हैं अलका याग्निक की आवाज़ बाबुल सुप्रियो के साथ. और ये गाना आपके लिए हम क्या यही प्यार है मूवी से लेकर आए हैं.

0: ABC Radio, 24 hours a day.
1: चलिए जरा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ विज्ञप्तियां आपके लिए पढ़ते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड प्लानवेट के निवासियों को सूचित करता है कि मददुल इस्लाम एडगोलोरों लापे लिनेव वे और चाइना गलियों में तथा आसपास के इलाकों

में फिर वालीपितो के बुलवा गली विक्टोरिया गली ममलोवेया देपिने गलियों में तथा आसपास के इलाकों में आज रविवार 5 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से दिन के 1 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। क्यूबिक के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि ओकुले कास्टेल एंग्रीमोसियल में तथा लापेरूस कांगुयो स्टर्लिंग सिवानंदा एवेन्यू लोटस गुलाम हुसैन वुम्ड मॉडर्न हारी रोवर रामदीन मिलब्राव चमन गारों अपाया गोत्रे बागेराती हजारी सिंह ईदू अकबर गलियों तथा इलाकों तथा आसपास के इलाकों में और गनाचन के एक भाग में तूफानी बाउंड्री एम्पास कारोल और मोसेलमा कौतें मोसेलमा गुब्बिन मोसेलमा सुशों इलाकों में तथा आसपास के इलाकों में आज रविवार 5 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सीबी रोज हिल के निवासियों को सूचित करता है कि एवेन्यू बाउंड्री और एवेन्यू फॉगवर्क में तथा आसपास के इलाकों में आज रविवार 5 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से दिन के 2:30 बजे तक यानी कि 2:30 तक मरम्मत कार्य होंगे जिस वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। बेलमॉ के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि शिबानी फाइनेंस ईडन विला डोम्बेया एवेन्यू और कोस्टल रोड तथा आसपास के इलाकों में आज रविवार 5 जुलाई को सुबह 9:15 बजे से दिन के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। रोजिल के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि रुट उगनें और ससेलिकोट ऑन्टेम और आसपास के इलाकों में आज रविवार 5 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से दिन के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। बबासे के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि एम्पास डॉक्टर लेजूर एसओएस विलेज फ्लैट सेलुसिया एमआईटीडी सर्किट जगत सिंह कॉलेज जॉन केनेडी और आसपास के इलाकों में आज रविवार 5 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से दिन के 3 बजे तक मरम्मत कार्य होंगे और इस वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर बबासें के ही निवासियों को सीबी सूचित करता है कि डॉक्टर लेजूर एवेन्यू कोडाबकस एवेन्यू फिलिप राउल एवेन्यू मोदाव ड्रीम प्राइस बबासें Résidence Vulmain, NHDC Vulmain, Dr. Reid, Mahadev Biltou, Dupéré, Châteauneuf और आसपास के इलाकों में आज रविवार 5 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक फिर दोपहर में 2 बजे से 2:30 बजे तक यानी 2:30 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। इधर सुरीनाम गांव के निवासियों को और मोसेलमा गोबिन सुरीनाम के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि अगले बुधवार 8 जुलाई को सुबह 9:00 बजे से शाम के 4:00 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से इन इलाकों में बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। इन सभी इलाकों में मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे ये मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। तो ये थी विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से और ये है हमारा रेडियो मॉरिशस चैनल आप लोगों के मनोरंजन का चैनल।

0: इस वक्त हम पेश कर रहे हैं सुबह का नजराना आपके लिए। सुबह का ये नजराना आप लोगों के लिए बहुत मंगलमय रहे।
1: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस।

0: झलकियां
1: झलकियां एक झलक तो हम दौड़ाएंगे हमारे प्रोग्रामों की ओर। आज रेडियो मर्शस पर कौन कौन से प्रोग्राम हैं, चलिए ज़रा नज़र दौड़ाएं साथ साथ मिलकर। फिलहाल तो आपके लिए हम पेश कर रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम, और ये कार्यक्रम हम 8 बजे तक पेश करेंगे, जिसके बाद आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे जिसे लेकर आशिता आएंगी। फिर 8 बजे के समाचारों के बाद पैगाम आपके नाम प्रोग्राम हम पेश करेंगे, और इसमें आप अपने अपनों के नाम भेज सकते हैं, अपने मन से निकले हुए विशेस, और आप अभी से ही मैसेजेस भेज सकते हैं 5251700 हमारा नंबर है मैसेजेस के लिए। फिर 9 बजे संक्षिप्त समाचार होंगे, उसके बाद आप एक विशेष कार्यक्रम सुन पाएंगे अनवर महफिल मुहर्रम के अवसर पर, ये प्रोग्राम होगा जिसे निसार पेश करेंगे, जिसके बाद आप 10 बजे सुन पाएंगे आज के संक्षिप्त समाचार, उसके बाद निसार ही पेश करेंगे आज का उर्दू प्रोग्राम 11 बजे तक। फिर 11 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद आप तमिल प्रोग्राम सुन पाएंगे सुंदरम की प्रस्तुति में, राजेंद्र 12 बजे लेकर आएंगे आज का तेलुगु प्रोग्राम, और जिन लेकर आएंगे चाइनीज प्रोग्राम 2 बजे। 3:30 बजे आप रंगारंग कार्यक्रम रत्ना से सुन पाएंगे गुजराती भाषा में, और पूजा पेश करेंगी आज का आप और हम कार्यक्रम 4 बजे से 5 बजे तक और 5 बजे से 6 बजे तक तो हर पसीन प्रोग्राम। 6 बजे होंगे संक्षिप्त समाचार, और माफ कीजिए 6 बजे होगा बुलेटिन, समाचार बुलेटिन, और 6:30 बजे आप सुन पाएंगे आज का चाइनीज प्रोग्राम होंग होंग की प्रस्तुति में। 7 बजे तमिल प्रोग्राम पुवाना लेकर आएंगी, वंदना लेकर आएंगी आज का तेलुगु प्रोग्राम 7:30 बजे, और शीरीष पेश करेंगे आज का गीत गंगा प्रोग्राम जो 7:50 से 8:10 तक होगा, जिसके फौरन बाद आप सुन पाएंगे रोशनी की प्रस्तुति में आज का भजले प्रभु का नाम। फिर समीर लेकर आएंगे आपके लिए महफिले शब उर्दू भाषा का, ये प्रोग्राम 8:40 पर, और 9 बजे से रात्रि के 11 बजे तक आप भोजपुरी तड़का प्रोग्राम उषा से सुनिएगा। फिर पुराने गानों के प्रोग्राम का समय आएगा सुनहरे पल, रात्रि के 11 बजे से 12 बजे तक आज सुनिएगा गिनीशा की प्रस्तुति में ये प्रोग्राम। सो ये सारे के सारे प्रोग्राम आपके मनोरंजन के लिए हैं, हर मनोरंजन आपका होता रहे, दिल आपका खुश रहता रहे, और हर पल आपका साथ रेडियो मॉर्शस देता रहे, इसका पूरा बंदोबस्त है। तो चलिए आपके नाम करते हैं श्रेया घोषाल की आवाज़ में वो मशहूर सा गाना जिसे हमने कृष्णा कॉटेज से लिया है, और एक ज़माना जो याद आएगा उस ज़माने के याद के साथ साथ आपका मन भी गुनगुनाएगा।

0: सीटीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: हेलो, अबे तू फिर आ गया कबाब में हड्डी?
2: मैं हड्डी नहीं हूँ, हड्डा हूँ, अपने डैडी का डड्डा हूँ, डिवोर्स कराने का अड्डा हूँ।
1: एक बहुत बड़ा खड्डा है तू।
3: पल तो पल का ये सफर, पल तो पल का साथ।
0: रविवार 5 जुलाई को MBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म हद कर दी आपने 2000 के साल की ये मूवी गोविंदा और रानी मुखर्जी पर फिल्माई गई हद कर दी आपने। MBC TV रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
4: कुछ कुछ होता है,
5: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
6: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
3: तुम पास आए।
0: रविवार 5 जुलाई को MBC 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 की सबसे बड़ी रोमांटिक मूवी शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी पर फिल्माई गई कुछ कुछ होता है।
4: क्या

0: चलिए जुलाई महीने के इस नए रविवार पर हम अपने आप से ये गुजारिश करें, अपने आप से ये वादा करें कि इस संसार में हम जहाँ भी रहें प्रगति को अपना मोटिव बना डालें और औरों के दिल को खुश करना भी अपना मोटिव बना जाएं और इन मोटिवों में हम शामिल कर लें औरों के लिए कुछ अच्छा कर जाने का। तो यह है सुबह का नजराना आप लोगों के नाम।
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।
0: इस नजराने को जो आप पा चुके हैं, इस नजराने को खूबसूरत बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आराम फरमाने का आपका प्लान हो तो आपके जीवन में आराम का ये मकसद बहुत ही प्यारा रहे, बहुत ही सक्सेसफुल रहे, ऐसी हमारी उम्मीद है। चलिए ज़रा बस ये दुआ करते हैं कि हर परिवार में, हर दोस्तों के बीच में, हर एक टोली में बहुत सारा प्यार रहे और बहुत सारा लगाव रहे, एक दूसरे के प्रति कुछ कर दिखाने का भाव रहे। क्या कहना मूवी का ये गाना है और इस गाने से वो वाइब पैदा होता है कि जिससे हम अपनों को खुश करने की कोशिश

0: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।
1: तो 7:47 हुए हैं, बढ़े जरा हम कहानी की ओर। कहानी ये दो दोस्तों की है। दो दोस्त रेगिस्तान में गुजर रहे थे, रेगिस्तान से गुजर रहे थे। यात्रा के दौरान किसी बात पर उनके बीच बहस हो गई और एक दोस्त ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। जिस दोस्त को थप्पड़ लगा उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन बिना कुछ कहे उसने रेत पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। वे आगे चलते रहे और उन्हें एक ओआसिस मिला जहां उन्होंने नहाने का फैसला किया। जिसे थप्पड़ लगा था वह दोस्त दलदल में फंसकर डूबने लगा, लेकिन उसके दोस्त ने उसे बचा लिया। डूबने से बचने के बाद उसने एक पत्थर पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। जिस दोस्त ने थप्पड़ मारा था और जान बचाई थी उसने पूछा, जब मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई तब तुमने रेत पर लिखा और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, जब कोई हमें दुख पहुंचाता है तो हमें उसे रेत पर लिखना चाहिए जहां क्षमा की हवाएं, माफी की हवाएं उसे मिटा सकें, लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हमें उसे पत्थर पर खोदना चाहिए जहां कोई हवा उसे कभी ना मिटा सके, जिस बात को हम कभी ना भुला सके। तो क्या सीखा हमने? बेशक यही सीखा कि जो बातें हमें दुख देती रहे उसे क्षमा की हवा से रेत की तरह उड़ाकर भूल जाने में ही भलाई है, जबकि अच्छी बातों को या

स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतुष्टि सबसे बड़ी संपत्ति, मुस्कुराहट सबसे बड़ी ताकत है और वफादारी सबसे उत्तम रिश्ता। आप लोगों के जीवन में इन उपहारों, संपत्तियों, ताकतों और रिश्तों में बहुत बहुत वृद्धि रहे। आपके जीवन में ये उपहार, संपत्ति और ताकत तथा रिश्ता भरपूर रहे। इस दुआ के साथ हम आपसे कुछ पल के लिए अनुमति लेंगे, क्योंकि वक्त का इशारा 8 बजने का हुआ जा रहा है। कुछ ही मिनटों में, 4 मिनट में 8 बज जाएंगे और 8 बजे आप सुनिएगा भोजपुरी में समाचार, जिसे लेकर आएंगी आशिता। तो तब तक के लिए आप लोगों के लिए चोरी चोरी चुपके चुपके ये गाना हम सुनवाते हैं, जरा संभल के सुनिएगा। ये है कृष्ण मूवी का गाना।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला जा फिर के 8 बजे बाटी।

आठ बजे के समाचार में सब लोग की स्वागत कर ले जाता है। सब कोई की नमस्ते आप प्रणाम। सबसे आगे हम नहीं बात कर अब जा बजट के बारे में। जैसे आप लोगन की पता बाटे बजट 2026-2027 के लेके इवेन साइबर सिटी में विश्वविद्यालय के लयिका लोग युवा उद्यमी और नीति निर्माता लोग के बीच एगो संवादात्मक सत्र के आयोजन भइल और एकर में ई अवसर रह जूनियर मिनिस्टर दनेश्वर दामरी और फैब्रिस डेविड और एकर संगे सांसद काविराज रुकनी जे मौजूद रहन उ लोग सवाल के जवाब देलन जा। प्रतिभागी लोग का रोजगार सृजन और कार्य के आगे बढ़ाए के अवसर पर और क्रय शक्ति के में सुधार और युवा लोग से जुड़ा दूसर महत्वपूर्ण मुद्दा पर अपन अपेक्षा आ सुझाव सीधा उनकर आगे रखलन जा। बजट 2026-2027 पर आयोजित ई संवाद सत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य के अर्थव्यवस्था पर विशेष चर्चा भी भइल। सरकार बोललक कि AI के रोजगार के खतरा के बजाय एगो अवसर के रूप में देखे के चाही और मॉरिशस के क्षेत्रीय हब के रूप में विकसित हो सकी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में मॉरिशस समावेशी और न्यायसंगत डिजिटल परिवर्तन में बदलता भारत और मॉरिशस रोजगार कौशल विकास सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल सहयोग के मजबूत करे पर सहमति जतैली बाटी। राजनीति के स्तर पर फो मिलिटों प्रोग्रेसिस के नेता पोल बेरांजे फाइनेंस बिल 2026-2027 के आम परिवार और छोटा मध्यम उद्योग खातिर नुकसानदायक बतैलन। उ बोलन कि सरकार सार्वभौमिक पेंशन के मुद्दा पर

जनता के गुमराह कर ले बाटे ई उ आरोप लगैली हवन। आर ई भी बोलन कि देश में महंगाई और आर्थिक ठहराव की उ चेतावनी देवत हवन। आर आज 5 जुलाई के क्यूपिप के सैंती गैस गिरजाघर में तीसरका मेस्तेजौचिस के आयोजन करल जाता। ई विशेष प्रार्थना सभा में विभिन्न गोक्षेत्र के कलाकार शामिल होयन जा आ समाज में उलोक के योगदान के भी सम्मानित करल जाए।

0: मोशस में अपन प्रस्तुति दी हन। उनकर बहु प्रक्षित कंसर्ट जोन बाटे उ आवत बरिस के 21 फरवरी के महीना में होई एकर आयोजन त्रियानो कन्वेंशन सेंटर में करल जाए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करी ला जा हमनी थोड़ा सुन फुटबॉल के बारे में। जो फुटबॉल देख ले हवा तो जनब कि काल जोन मैच खेलल गल फ्रांस और पाराग्वे के बीच। ई मैच के स्कोर रहल एक 3 यानी कि ला फ्रांस जोन बाटे उ 3-1 बाटे। ला फ्रांस जोन बाटे उ 1 गोल दलक और ई रहल ओकर कप्तान किलियान एम्बापे जोन हवन उ ई गोल दलन। और मोरक्को जोन बाटे उ कनाडा के खिलाफ खेलन और उ 3-0 के स्को बनाई लगन। और ऐसन ये लोग फिनो से भेंट करियन जा क्वार्टर फाइनल में आवद बीफे के। और जोन मैच खेला जाए उमें ब्राज़ील और नॉर्वे जोन बाटे उ आज रात 12 बजे खेली। और कल फजीर के 4 बजे मेक्सिको खेली इंग्लैंड के खिलाफ। दूसरा देश के समाचार में जो नबी सुर्खी में बाटे उ बा इस्लामी गणराज्य के प्रति जोन सबसे वफादार बड़ा संख्या में ईरानी नागरिक देश के पूर्व सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार समारोह में पहले दिन तेहरान में एकत्र हुआ था। अंजा आयतुल्ला अली खामेनेई युद्ध के शुरुआत में अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हवाई हमला में उनकर मृत्यु हो गल रहल। और ईरानी सरकार मीडिया के अनुसार अंतिम संस्कार से जुड़ा समारोह 6 दिन ले ईरान और पड़ोसी इलाका के कई गो स्थान पर आयोजित करा जाता। एक बाद बीफे के ओकर पैतृक शरीर मशहद में ओकर सुपुर्द खाक ओके करल जाए यानी कि ओके दफनावल जाए हुआ पर। तैकरे संगे ई भोजपुरी में समाचार समाप्त भेल। संगे रह अभी बढ़ब जा मरनी के समाचार देने।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: मानी के समाचार सुना। पच्ची शुमें बेले रिव्या सेश में पच्ची शुमें बेले रिव्या सेश में 3 कोड़ी 6 बरिस के 66 years old के श्री सेवन चितलाई सिंह श्री सिवन चितलाई सिंह जिनकर बाबू के नाम से बेदमी जैसे जानते हैं जाके मृत्यु हो गल बाटे। इनकर अर्थी आज 2 बज के आधा इनकर भाई कृष्णा चितलाई सिंह के घरे पचीश्वर में बेले रवि से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बुशों के शमशान भूमि ली जावल जाए। क्रिमेशन टीटीर हॉफ पॉस 2 PM एवेन्यू दिस अलवेट मोसलमा सदना कैट्रबोन में एवेन्यू दिस अलवेट मोसलमा सदना कैट्रबोन में 83 बरिस के 4 कोड़ी 3 बरिस के श्री देवनाथ सनातन जिनका भाई सुरेश के नाम से बेदमी जिसे जानधन जाके मृत्यु हो गल बाटी। इनकर अर्थी आज 2 बज के आधा इनकर पत्नी श्रीमती इंदू रानी सनातन के घरे मोसलमा सदनाक से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पालमा गांधी के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टीटीर हॉफ पॉस 2 PM तागोलेन लाफ्लोगा में 44 बरिस के 2 कोड़ी 4 बरिस के श्री शक्ति मोदू जिनकरा शक्ति के नाम से बेदमी जैसे जानते हैं जन देवानंद मोदू के बेटा रलन के मृत्यु हो गल बाटे। इनकर अर्थी आज 11:45 पर इनकर पत्नी श्रीमती काजल मोदू के घरे लाफ्लोगा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांव पाके शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टूडे एट 11:45 AM रॉय रोड रिविया दिगाले में 55 बरिस के 2 कोड़ी 15 बरिस के श्री संजय आपादू जिनकरा जीतन के नाम से भी आदमी जैसे जहाँ तक जाकर मृत्यु होकर बाटे। इनकर अर्थी आज 2 बजे इनकर घरे रिविया दिगाले से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुए कि शमशान भूमि ले जाओ जाए। क्रिमेशन टीडिया 2 PM एवेन्यू विक्टोरिया कैट्रबोन में 61 बरिस के 3 कोड़ी 1 बरिस के श्रीमती लता चतुर सिंह पैदाश नाम बोयोगो जिनकरा लता के नाम से भी अनबी जैसे जानते हैं जा कि मृत्यु हो गल बाटे। इनकर अर्थी आज ला शापेल और दौ दुमुगा पचित्रविया से 12:15 के उठा के उन अंतिम संस्कार खातिर शिवेल की शमशान भूमि ले जावा जाए क्रिमेशन टी एट 12:15 PM नारद रोड पुछिकाफे में नारद रोड पुछिकाफे में 61 बरिस के 3 कोरी 1 बरिस के श्री हेमराज दशरथ जिनका विजय के नाम से भी जिसने आतन जाकर मृत्यु होकर बाटिनकर अर्थी आज भजीत के 10 बजे इनका बेटा संदीप दशरथ के घर पुछिकाफे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मोमास्काल पुछिकाफे की शमशान भूमि ले जावा जाए क्रिमेशन टी एट 10 AM

0: शिवालक लेन वाकुआ में, शिवालक लेन वाकुआ में 70 बरिस की तिनकुड़ी 10 बरिस के श्री रोहित बहादुर जिनकर आरादेव मौसम पुमदितिया के नाम से भी अदमी जैसी जानते हैं जाकिन मित्र कल बटेन कर अर्थी आज जब फजीर के 10 बज के आधा इनकर पत्नी श्रीमती प्रेमिला बहादुर के घर वाकुआ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर थामामेल के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू डी एट 10:30 AM काली माई रोड रिविया जोरोंपा में, काली माई रोड रिविया जोरोंपा में 19 बरिस के 19 ईयर्स ओल्ड के श्री आजागैन रंगा स्वामी जिनकर आविसन के नाम से भी अदमी जैसी जानते हैं किरमितुगल बटिन कर अर्थ ही उनकर पिता सिवन रेंगा साउमी के घर से रिविया जोरोंपा से बाद में उठावल जाए क्रिमेशन आफ्टर वर्ड्स मुसलमान रामफुल बोमोंग प्लेंदी पपाई में, मुसलमान रामफुल बोमोंग प्लेंदी पपाई में 70 बरिस के 3 करोड़ 10 बरिस के श्री इंदर देव लक्ष्मण प्रसाद जिनकर आनू के नाम से भी अदमी जैसे जाथन जा किरमितुगल बटिन कर अर्थ ही आज फजर के 10 बजे इनका घर प्लेंदी पपाई से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बोमोंग प्लेंदी पपाई के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन चिड़िया 10 AM बंगाली रोड बुसांज में 71 बरिस के 3 करोड़ 11 बरिस के श्रीमती विद्वंती मितन जिनकर माला के नाम से भी जैसे जाते हैं जाके मृत्यु होकर बाटी इनकर अर्थी आज 2 बजे इनका घरे बुसांज से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मुताय सैफिया बॉम्बू की शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन चिड़िया 2 PM जानकी रोड पुत्रोदो विलाज में 78 बरिस के 3 करोड़ 18 बरिस के श्रीमती बृहस्पति राम जिनकर सतिया के नाम से भी अदमी जैसे जाते हैं जाकर मृत्यु होकर बैठे इनकर अर्थी आठ फजर के 10 बजे इनकर बेटी सीता जुमक के घरे पुत्रोदो विलाज से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बेलमो गुडलैंड के शमशान भूमि ले जाओ जाए क्रिमेशन टूडी 10 AM आवेनी जीव नारायण पालमा काठोबोन में 2 करोड़ 19 बरिस के 59 ईयर्स ओल्ड के श्री सूर्यदत्त लखन जिनकर अशोक औपौत्य के नाम से भी आदमी जैसे जातन जाके मृत्यु होकर पाटी इनकर अर्धी आज फजीर के 9 बज के आधा इनकर पत्नी श्रीमती पूनम लखन के घरे काठबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू डी एट 9 AM सिमिचिया रोड प्लेनमानियों में 36 बरिस के 1 करोड़ 16 बरिस के श्री वितीश बुदन जिनकर निश्ले के नाम से भी अनवी जैसे जाते हैं जाके मृत्यु होकर बैठे इनकर अर्थी काल सांझ के 4 बज के आधा इनकर माँ संध्या गाबू जी के घर से प्लेन मानियों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुए के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुमोरो एट 4:30 PM कानेलिया स्ट्रीट टेरासों पॉइंट सब में 84 बरिस के 4 करोड़ 4 बरिस के श्रीमती परमा लंगांदी पाम्बेन पैदाश्राम रामास्वामी जिनकर विनोदा के नाम से बेनमी जैसे जानते हैं जाके मृत्यु होकर बाटे इनकर अर्थी आज 11 बजे ला मोगा पेचित रिविया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सिपाही भूले वाले दिपत के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टी डी 8:11 AM नोवेल फ्रांस विलेज होल के भीरी सवान रोड नोवेल फ्रांस में 44 बरिस के 2 करोड़ 4 बरिस के श्रीमती सोमा देवी भोला पैदाश्राम तिलक का जिनकर सोमा के नाम से भी आदमी जैसे जानते हैं जाकर मृत्यु गल पाटी इनकर अर्थी आज 12 बजे इनका घर नोवेल फ्रांस से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पैनमानियों के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टी डी 8 noon हॉलीवुड नंबर एक वाकुआ में 66 बरिस के 3 करोड़ 6 बरिस के श्री गुरुदत्त दूधी जिनकर मनोन के नाम से भी आदमी जैसे जानते हैं जाके मृत्यु होगल बाटी इनकर थी आज दिन के 1 बजे इनकर भाई सुनील दुदी के घर वाकुआ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर थामामेल वाकुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टी डी 1 PM रुतपालमा काठबोन में 32 बरिस के 1 करोड़ 12 बरिस के श्री दिविज अबनाराम जिनकरा दिविज के नाम से बेदमी जैसे जानते हैं जाके मृत्यु होगल बाटी इनकर अर्थी आज सांझ के 4 बज के आधा इनकर बाप बरी अब नारायण के घरे काठरबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जावा जाए क्रिमेशन टी डी एट 4:30 PM शोक और दुख में डूबली सब परिवार के संगे हमने के दिली संवेदना बाटे
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर रेडियो मॉरिशस
2: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका स्टेप 1 सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूज

यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर MIPS पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द MBC प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा MBC प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।

इस समय सुबह के 8:16 हुए हैं और लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए, आप लोगों के नाम आज का ये प्रोग्राम, ये है संदेशों का प्रोग्राम, पैगाम आपके नाम। बस पैगाम आपके नाम कार्यक्रम में आप हमारा साथ दीजिएगा और हमारा साथ देकर इस प्रोग्राम की शान बढ़ाइएगा। आप अपने अपनों के नाम भेज सकते हैं अपने संदेश और आपके अपनों तक हम आपके संदेश ज़रूर पहुंचाएंगे। वैसे सुबह 6 से हमारा आपका साथ है और हमारा साथ बड़े प्यार से दे रहे हैं सूरज शर्मा सजादा जी, और हमारा साथ दे रही हैं माला सुमाऊ जी, और हमारे साथ साथ हमारे कई श्रोता हैं जिनमें शामिल हैं सुनीता जी दागोचिया से और विश्वानी जी वाकुआ से, और साथ ही साथ अनीता जी मौदाल बेयर से। और हम ना धीरे धीरे करके हमारे सभी श्रोताओं के मैसेजेस पढ़ेंगे। सो आप भी अपने अपनों के नाम कीजिएगा वो गाने, वो मैसेजेस जो आपके मन में उठ रहे होंगे अभी किसी भी इवेंट के लिए, चाहे जन्मदिन हो शादी की सालगिरह हो या कोई भी खुशी का मौका हो, आप अपनों के साथ अपने संदेश बांटिएगा ज़रूर हमारे प्रोग्राम में।

उन्हीं छेड़छाड़ के साथ ही तो प्यार का बंधन और भी गहरा होता है। चलिए ज़रा हम इसी छेड़छाड़ के साथ प्यार के बंधन को गहरा करते हुए मैसेजेस का सिलसिला भी इसमें शामिल करके प्यार की गहराई को और भी ताज़ा कर देते हैं। आज हमारा साथ तो हमारे बहुत सारे श्रोता दे रहे हैं, लक्ष्मण सिगोबिन जी क्लेफों वाक्वा से शिव मंदिर के सभी भक्तों के साथ मिलकर उनकी तरफ से और अपनी तरफ से हमारे सभी श्रोताओं को शुभ रविवार का संदेश दे रहे हैं। माला जी हैं बबासे से हमारा साथ दे रही हैं। अनीता जी मौदाल बेस से करुणा अमृता इतु परिवार और गोगा परिवार के साथ मिलकर हमारे साथ साथ हैं। आपका साथ मिल जाता है तो ये सुबह बहुत ही प्यारी हो जाती है। आपके साथ की ही बदौलत तो ये सारा संसार खुशगवार सा नजर आता है। हम हैं सुरेखा, आपका साथ दे रहे हैं साथ आपका विशेष के साथ, और आपका साथ जो मिल जाता है तो ये पल बहुत हसीन हो जाता है। 8:25 हुए हैं। हम सुनीता जी की तरफ से, घोंगुप की सुनीता जी की तरफ से उनके भतीजे आनिश जी को वेरी हैप्पी बर्थडे कहते हैं। आपके जन्मदिन के अवसर पर आनिश जी, आपकी मामा गीता, आपके पापा अजय, फूफू अमृता और सुनीता, आपके कजिन्स आशना, आंतिश, नकुल, तन्वी, केशु, पूरा परिवार आपको कह रहा है अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारी पूरी टीम की तरफ से भी बहुत मंगल कामनाएं।

और जन्मदिन की मंगल कामनाएं हम देते हैं विश्वानी दुमन जी को। विश्वानी दुमन जी ने कल अपना बर्थडे मनाया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके जीवन में खुशियों का गुलदस्ता बार बार मिलता रहे आपको, और आपके जीवन में खुशियों की जो बौछार है वो हमेशा रहती रहे, आपके दरवाजे पे बस सुख ही सुख का आना हो। विश्वानी जी ने वैसे ही हमें चाय पर हर बार इनवाइट करती है, आज केक के साथ भी इनवाइट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वानी जी, आपको मंगल कामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से।

चलिए जरा हम वाका की सुदेवी जी की तरफ से बर्थडे विश भेजते हैं प्यारे से वीर को, ऑस्ट्रेलिया में प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा वीर अपना फर्स्ट बर्थडे मना रहा है। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू वीर, आपको शुभकामनाएं मिली हैं आपके पूरे परिवार की तरफ से, स्पेशली फ्रॉम मम्मा वर्षा, पापा विमल की तरफ से, दीदी निया, ताया की नानी, वहाँ से मामू आश्विन, मामी देवीना, कजिन लेशनव, रक्षित, मालेगा की फूफू अनुषा, फूफा किरण, कजिन केशनी, कृषय, प्रनीता और पूरे राम रतन परिवार की तरफ से, राम गुलाम कुवाहू और गुरन सिंह परिवार की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्यारे से वीर को। हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन की।

और जन्मदिन की मंगल कामनाएं हम श्यामा जी की तरफ से दे रहे हैं फ्रांस में उनकी नातिन वृष्णि को। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू वृष्णि उदिन, आपको मंगल कामनाएं, आपको आपके पूरे परिवार की तरफ से। आपका ये 20वां जन्मदिन आप लोगों आपके लिए बहुत मंगलमय रहे, बहुत खुशियों भरा रहे और हर कदम पे आपको सफलता दे जाए। और जन्मदिन की मंगल कामनाएं आपको मामा नीतू की तरफ से, बहन निधि की तरफ से, आंटी रेशमा और श्वेता की तरफ से, मौसा अनिल और मनोज की तरफ से, नानी माँ श्यामा की तरफ से, यानिश, यश, परी, अनुष्का, मिला परिवार और उदीन परिवार सब मिलके कह रहे हैं आपको अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू वृष्णि।

और मंगल कामनाओं का ये गुलदस्ता है दिशाल महादू जी को, उनके जन्मदिन के अवसर पर कबूल फरमाइएगा। दिशाल महादू जी, ये फूलों वाला प्यारा सा गुलदस्ता, गीतों वाला, विशेस वाला, बहुत बहुत दुआओं वाला गुलदस्ता, और आपको मंगल कामनाएं भेजी है आपके आपके वर्क में डिवनाना के, आपके सभी दोस्तों की तरफ से, सभी सखाओं की तरफ से, और आपकी मामा की तरफ से, आपकी दोनों बहनों की तरफ से, फिर आकाश चेतन

मनसुख जी स्पेशली आपको बॉम्बू से भेज रहे हैं बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं मनसुख परिवार की ओर से, और उन्होंने दोस्ती निभाते निभाते आपको बहुत बहुत खुशियों की दुआएं दी हैं।

दोस्ती हर किसी के बीच में बहुत प्यारी सी रहे, वफा है दोस्ती का सबसे पहला रामबाण। और वफा और अपनी दोस्ती को साथ साथ ज़रूर लेकर चलिएगा। चलिए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं विशेष के इस प्रोग्राम में, संदेशों के इस प्रोग्राम में, पैगामों के इस प्रोग्राम में। पैगाम आपके नाम कार्यक्रम में हम इस बार विश करते हैं जन्मदिन हमारे श्रोता आज़ाद जी को। आज़ाद जी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। आज़ाद गुलाम हुसैन जी को जन्मदिन की मंगल कामनाएं। उनकी बीवी रेहाना की तरफ से, अमीरा, जायान, इरफान, जीनत, दीना, यासिर की तरफ से और लिल बेबी अलीजा की तरफ से, फी, नूजा और ईदू परिवार की तरफ से, गुलाम हुसैन परिवार की तरफ से जो न्यू ग्रोव के रहने वाले हैं। और विशेष दुआएँ, ख़ास दुआएँ उनकी मम्मा अंशु की तरफ से। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद आज़ाद गुलाम हुसैन जी, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से।

हमारा साथ देने वालों में शामिल है अनीता जी फ्री कॉम्फ्लैक्स से। अनीता जी ने बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजी हैं हमारे सभी श्रोताओं को संडे की, और उनका ये कहना है कि आज की ये सुबह आप लोगों के लिए बहुत मंगलमय रहे, और बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी हैं हमारे सभी श्रोताओं को। और इधर हमें मैसेज मिला है सुनीता जी का, सुनिश्चित से। सुनीता जी कह रही है कि उनकी बहन का जन्मदिन है और उनके लिए बहुत सारी दुआएं। चलिए ज़रा हम पेश करते हैं ये प्यारा सा गाना आपको जन्मदिन की मंगल कामनाएं देते हुए, और यही उम्मीद करते हैं कि आपकी बहन को बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा प्यार मिलता रहे। वेरी हैप्पी बर्थडे।

तो जहाँ भी कोई इवेंट हो वहाँ पर खुशियाँ मनाने का मौका ही है। खुशियाँ मनाने का ये मौका आप मत जाने दीजिएगा, ज़रूर अपने मैसेजेस अपने अपनों तक पहुँचाइएगा। इधर आशा जानू जी हैं कोटेज से, हमारे प्रोग्राम को सुन रही हैं और हमारा साथ दे रही है पूरी फैमिली के साथ, और सभी लिसनर्स को हैप्पी संडे कहा है। उनकी मामा कुमारी, निफ्यूज, शुभम, ऋषभ, दीदी आरती, जीजू राज और जानू परिवार सब मिलकर हमारी पूरी टीम को और हमारे सभी सुनने वालों को हैप्पी संडे विश कर रहे हैं। और साथ हमारा दे रही हैं फातिमा जी। फातिमा जी न्यू ग्रोव से नाश्ता करते हुए हमारा शो सुन रही हैं, तो बोन अपेची फातिमा जी, आप हमारा साथ हर संडे देती हैं, हमें याद है आपका मैसेज हमें हमेशा मिलता है, थैंक यू सो मच साथ निभाने के लिए। और यहाँ पर हीरू परिवार और ओगी परिवार में एक प्यारी सी दुलारी सी परी का आगमन हुआ है। बॉम्बू से इस प्यारी सी परी की चाची लक्ष्मी जी बधाइयां गाए जा रही हैं। जैसन और निष्ठा जी पापा और मामा बनने की खुशियां मना रहे हैं। आप सबों को ये प्यारी सी परी मुबारक हो।

इस समय 8:54 हुए हैं। बस एक अंतिम गाना हम पेश करेंगे हमारे पैगाम आपके नाम कार्यक्रम में। हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं सुनिश्चित की सुनीता जी को। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू सुनीता जी। आपके जन्मदिन के अवसर पर आपकी बहन गीता जी ने आपको बहुत सारी मंगल कामनाएँ भेजी हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत सारी दुआएँ, आपको खुशियों का गुलदस्ता हासिल होता रहे। और इधर बहन फजीना को मंगल कामनाएं मिली है हैप्पी बर्थडे के लिए। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू सिस्टर फजीना फ्रॉम सिस्टर्स फाइना, नाजमा, अमीना और मुनीजा, और उनके पति निज़ाम की तरफ से बेटे शमीम और नूरानी की तरफ से बेटों शमीम और नूरानी की तरफ से और अब्दुल की तरफ से भी, और उनकी बेटी नूर जबीन की तरफ से, पूरे सभी परिवार की तरफ से, याहू फैमिली की तरफ से जो खुशनुआ के रहने वाले हैं, बिहारी परिवार की तरफ से जो पोंभाले के रहने वाले हैं। तो चलिए आपको मंगल कामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपका जन्मदिन। तो बस इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ हम समाप्त करते हैं आज का पैगाम आपके नाम कार्यक्रम। आपने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को आज का संडे बहुत बहुत मंगलमय लगे। आप लोगों ने जितने भी कार्य प्लान किए होंगे, सारे के सारे कार्य आपके सफल हो। आपसे हम आज्ञा लेते हुए इतना बता दें कि अभी 9 बजे आप सुन पाएंगे संस्कृत समाचार, उसके बाद आप एक विशेष कार्यक्रम सुन पाएंगे उर्दू में, जिसे पेश करेंगे निसार। हमारी आपकी अगली मुलाकात तक शुभ दिन, शुभ रविवार, नमस्कार।

0: 9:01 हो गया है अभी के लिए। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अर्षिता के साथ। आपको नमस्कार अर्षिता।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सब लोगों का स्वागत किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण कार्य क्षेत्र में तेजी हो रही बदलावों के बीच मॉरिशस ने समावेशी और न्याय संगत डिजिटल परिवर्तन की वकालत की है। जनेवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में श्रम एवं औद्योगिक संबंध मंत्री गिजाउतीम ने कहा कि कर्मचारियों के प्रशिक्षण कौशल उन्नयन और पुनः कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है ताकि कोई भी श्रमिक पीछे न रह जाए। उन्होंने डिजिटल असमानताओं को कम करने, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाले कार्यों के लिए प्रभावी नियम बनाने तथा सामाजिक संवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और सशक्त करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। फाइनेंस बिल 2026-2027 का आम परिवारों और लघु एवं मध्यम उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये दावा फो मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट के नेता पॉल बेरांजे ने कल आयोजित एक प्रेस वार्ता में किया। उनका कहना है कि मॉरिशस स्टैगफ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने और आर्थिक वृद्धि ठहर जाने की स्थिति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम पर सार्वभौमिक पेंशन के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। इसके अलावा पूर्व उप प्रधानमंत्री ने कहा कि पब्लिक गैदरिंग और वॉक्स एक्ट को इस फाइनेंस बिल का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। बजट 2026-2027 को लेकर कल इबेन साइबर सिटी में विश्वविद्यालय के छात्रों, युवा उद्यमियों और नीति निर्माताओं के बीच एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर जूनियर मिनिस्टर धनेश्वर दामरी, फैब्रिस दावित तथा सांसद काव्यराज हुकनी मौजूद रहे। प्रतिभागियों ने रोजगार सृजन, करियर में आगे बढ़ने के अवसर, क्रय शक्ति में सुधार तथा युवाओं से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी अपेक्षाएं और सुझाव सीधे उनके सामने रखे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित एक प्रमुख तेल टर्मिनल पर रात भर ड्रोन हमला किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये ऐसा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है जिससे रूस को युद्ध के लिए आर्थिक संसाधन प्राप्त होते हैं। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि इस क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख रूसी नौसैनिक अड्डे को भी निशाना बनाया गया है। वहीं सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर अलेक्जेंडर बेगलोव ने स्वीकार किया है कि शहर पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला हुआ है और तेल टर्मिनल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि उनके अनुसार इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हाल के महीनों में यूक्रेन ने रूस के ऊर्जा ढांचे पर लंबी दूरी के ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। कीव का दावा है कि इन हमलों से रूस की लगभग 43% तेल शोधन क्षमता प्रभावित हुई है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: रेडियो मॉरिशस
3: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस
3: रेडियो मॉरिशस।

बैत की जिया दिलों को मुनव्वर करती हैं। आपका मेज़बान निसार अख्तर दिल की अता गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता है। सामईन, माह मुकद्दस माह मुहर्रमुल हराम हमारे दरमियान साया फिगन है, इसी मुनासिबत से आज का ख़ास प्रोग्राम सजाया गया है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज 2 घंटे यानी 9 से 11 बजे हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और सामईन हसब मामूल आज भी आप अपनी फरमाइशें और दुआया पैगामात हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर वही है 5251705251705। उम्मीद है ये नूर अफशां बज़्म दिलों की आवाज़ और रूह की दुआ बन जाए, आमीन। आइए अनवार महफिल प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ सूरा अर्रहमान की तिलावत से करते हैं। बाग़ौर व अदब समात फरमाइए।

सामईन कराम, अभी आपने सूरा अर्रहमान की तिलावत समात फरमाई। बिलयकीन जिस मकाम पर कुरान हकीम की तिलावत की जाए वहाँ रहमत के फरिश्तों का नुजूल होता है। एक मुसलमान का सबसे मजबूत ताल्लुक कुरान पाक से होना चाहिए। ये वो किताब मुकद्दस है जिसको पढ़ना देखना सब इबादत हैं, जिसमें हमारे लिए दीनी दुनियावी मुआशी समाजी मुआशरती अखलाकी अलगरज तमाम पहलुओं के बारे में रहनुमाई मिलती हैं। कुरान में हर शय का बयान है। सामईन अब ये हमदे बारी व तआला मुलाहिज़ा फरमाइए।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, माह मुहर्रम उल हराम हर साल हमें शहदाए करबला बिलखुसूस इमाम आली वक़ार सैयदुश्शुहदा नूर नबूवत आयने शुजात हज़रत सैदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्ह की याद दिलाता है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्ह ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने अहले बैत के साथ मैदान करबला में ऐसी तारीख रकम की जो रहती दुनिया तक इंसानियत को हक व बातिल का फ़र्क सिखाती रहेगी। आइए सामईन, मरहूम ज़ुल्फ़िकार अली हुसैनी की मुतरन्नुम आवाज़ में ये नात शरीफ मुलाहिज़ा फरमाइए।

सामईन कराम, ये हकीकत हैं कि जो शख्स अपने दिल में मोहब्बत अहले बैत बिलखसूस इमाम आली वक़ार इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की

मोहब्बत को बसा लेता है, वो दुनिया व आखिरत की बरकतों से नवाजा जाता है। अहले बैत अतहार की मोहब्बत दुनिया व आखिरत की बेशुमार भलाइयों का सरचश्मा है। खुद आकाए दो जहां दिल बरे जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरे अहले बैत में किसी के साथ अच्छा सलूक करेगा, मैं क़यामत के दिन उसे उसका सिला अता फरमाऊँगा। सामईन, हमदो सना के बाद आइए अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत मौलाना मुहम्मद शाकिर अली नूरी रज़वी दामद बरकात उमालिया की ज़बानी एक ईमान अफरोज़ ख़ताब समात करते हैं। आपके बयान का उन्वान है, असल खुशी किसे कहते हैं? इंतहाई तवज्जो के साथ समात कीजिए।

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, एक ऐसी चीज़ को जानने के लिए हम और आप यहाँ पर जमा हुए हैं जिस चीज़ की तलाश पूरी दुनिया इस वक्त कर रही है। अगर हम देखें तो ज़िंदगी का सफ़र हर इंसान का उसी को पाने में गुजरता हुआ नज़र आता है। सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक एक ही चीज में इंसान गुम है, और वो चीज है कि उसे किसी न किसी तरीके से खुशी हासिल हो जाए। खुशी बहुत महंगी चीज का नाम नहीं है, बहुत सस्ती कुर्बानी के जरिए भी हम खुशी को हासिल कर सकते हैं, लेकिन दौरे जदीद के अंदर इंसान ने खुशी को बहुत महंगा बना दिया। मैं आज खुशी के हवाले से कुछ जरूरी बातें आपकी समातों के हवाले करूंगा और समझाने की ये कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि असल खुशी क्या है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में वो लोग जिनकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, आराम की, आसाइश की, शौकिया, उन सारी चीजों की मौजूदगी के बावजूद भी अगर उनकी जिंदगी के अंदर आप झांक कर देखें तो वो उसी एक चीज की तलाश में नजर आएंगे, वो है खुशी। और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी जिंदगी में बहुत कुछ है ही नहीं, वो भी अगर सीधे और गलत रास्ते पर चलते नजर आएंगे तो उनकी भी एक जस्तजू है कि उन्हें खुशी नसीब हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि 90-95% दुनिया में इंसान जो बस रहे हैं, अगर वो चाहें तो बड़ी आसानी से अपनी जिंदगी को खुशी में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन अपनी गलत सोच की बुनियाद पर वो खुशियों से महरूम रहते हैं। अगर किसी चीज का मिलना खुशी है, मिसाल के तौर पर दुनिया की आसाइश की चीजें, तो यहां थोड़ा सा मैं करेक्शन करता हुआ चलूं कि अगर इंसान की खुशी तीन चीजों से वाबस्ता हो जाए तो उस इंसान की खुशी टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती। अगर इंसान की खुशी किसी शख्स से वाबस्ता हो जाए, मिसाल के तौर पर किसी शख्स के बारे में उसका गुमान ये हो कि ये शख्स अगर मेरा हो जाए या मुझे इसकी कुर्बत नसीब हो जाए या मैं उसके करीबी लोगों में से हो जाऊं या इसे मैं पालूं तो मुझे खुशी नसीब होगी, तो ऐसे इंसान को मुस्तकिल खुशी नहीं मिलती, वो टेम्पररी खुशी मिलती है। इसलिए कि शख्स दुनिया का कोई भी हो, उस शख्स

की पोजीशन ये है कि वो शख्स मुस्तकिल दुनिया में रहने के लिए नहीं आया, वो शख्स कभी न कभी इस दुनिया से जुदाई का गम देकर चला जाएगा और फिर आप जिस शख्स से अपनी खुशी को वाबस्ता किए हुए थे, आपकी खुशी उसके जाते ही आपकी खुशी का जनाजा निकल जाएगा। पर्सन से खुशी को वाबस्ता करना ये टेम्पररी है। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, किसी चीज से अपनी खुशी को वाबस्ता कर दें तो वो भी टेम्पररी खुशी है। मिसाल के तौर पर कार मिल जाए तो मुझे खुशी होगी, BMW मिल जाए तो मुझे खुशी होगी। तो आप देखते होंगे कि ऐसी चीजों के मिलने के बाद दो दिन तक तो खुशी होती है, फिर तीसरे दिन आदमी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है, उस चीज की उसके नजदीक कोई अहमियत नहीं होती और वो रूटीन की लाइफ के अंदर लग जाता है। पहले दो तीन दिन वो आईफोन अगर कीमती वाला उसने लिया है तो वो अच्छी तरह से रखेगा, संभाल कर रखेगा, और 10-15-20 दिन के बाद उसका आईफोन कहाँ पड़ा है उसे खबर भी नहीं होगी। अगर नई कार खरीदा है, BMW खरीदा है, और उसकी खुशी ये थी कि मुझे ये कार मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, तो नई नई कार आई तो उस कार में बैठकर पहले दरगाह शरीफ गया, फिर गेटवे पर गया, फिर इधर गया, फिर उधर गया, और फिर 15-20-25 रोज के बाद अब ये कार उसके लिए एक नॉर्मल कार हो गई, अब वो खुशी उसकी परमानेंट नहीं रह गई। तो ये टेम्पररी खुशी है। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कोई आइडिया, कोई सोच हमारी है और उस सोच के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारे, उस सोच से अपनी खुशी को हमने वाबस्ता कर दिया। मिसाल के तौर पर हमने ये सोचा ये बना लें तो हम खुश हो जाएंगे, ये टारगेट अचीव कर लें तो हम खुश हो जाएंगे, तो आपने उसके सिलसिले में मेहनत की, मशक्कत की और आपने अपने आइडिया के मुताबिक वो टारगेट अचीव कर लिया, तो टेम्पररी आपको खुशी मिलेगी लेकिन वो खुशी आपकी परमानेंट नहीं रहेगी। मिसाल के तौर पर आप देख लें कि जब कोई मैच, कोई टूर्नामेंट होती है, उसके अंदर एक टारगेट होता है कि कैसे भी करके फाइनल के अंदर हमको जीत करके कप लेकर के आना है, तो जब तक कप नहीं आता उस वक्त तक आदमी मेहनत करता है, कप मिल जाने के बाद, टारगेट अचीव कर लेने के बाद, उसको अपनी लाइब्रेरी की जीनत या ऑफिस की जीनत बनाने के बाद, फिर दूसरे ही दम या तीसरे दम उसकी खुशी खत्म हो जाती है, ये भी एक टेम्पररी खुशी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, तो फिर खुशी क्या कोई ऐसी भी है जो परमानेंट खुशी हो? इसी को समझे, दुनिया में इस वक्त जो खुशी की तलाश के अंदर हैं, उनका किसी न किसी तरीके से खुशी का यही मैयार है, या तो शख्स से उन्होंने अपनी खुशी वाबस्ता कर दी, तो शख्स के सिलसिले में अगर अपनी खुशी को हम वाबस्ता कर देते हैं तो ये खुशी हमारी टेम्पररी होती है। शख्स के मिलने पर खुशी रुखसत, चीज के मिलने पर खुशी रुखसत, टारगेट के अचीव करने पर हमारी खुशी रुखसत। तो अब हम ये तलाश करें कि वो कौन सी चीज है और वो कौन सी खुशी है जो हमारे लिए टेम्पररी नहीं, परमानेंट है। तो ऐसी जात जिसके मिलने पर इंसान को खुशी नसीब हो सकती है और वो भी परमानेंट, टेम्पररी नहीं, वो ऑर्डिनरी जात नहीं, वो मदीने के ताजदार की जात है। इसलिए कि जितने इंसान हैं वो दुनिया में थोड़े दिनों के लिए आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में भी आपका साथ देने वाले हैं। इसको मैं हदीस की रोशनी में समझाऊंगा तो बहुत अच्छी तरह आपकी समझ में बात आ जाएगी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर आए और उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मता साह, कयामत कब कायम होगी? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने कयामत के लिए क्या तैयारी की है, क्या तैयारी की है? तो उसने कहा, हुजूर मेरे पास कोई ज्यादा नमाज रोजे तो है नहीं, बस आपसे और रब से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत मा मन अहबबता, तुम कयामत में उसके साथ रहोगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो।

सहाबा फरमाते हैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद हमने सुना तो ईमान लाने के वक्त जो खुशी हुई थी उसके बाद सबसे ज्यादा खुशी हुजूर के इस फरमान से हमें नसीब हुई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां ये चीज समझने की जरूरत है कि हम खुशी किससे वाबस्ता किए हुए हैं, किन चीजों से वाबस्ता किए हुए, हमने किन चीजों के पाने में खुशी महसूस की। असल ये बात याद रखें, खुशी जो है वो मन के अच्छे और इत्मीनान होने का नाम है, दिमाग के मुतमईन होने का नाम खुशी नहीं है, जिससे दिल मुतमईन हो। हमने खुशी को जोड़े रखा दुनिया की चीजों के साथ, लेकिन खुशी का ताल्लुक दुनिया की चीजों से कम और दिल से उसका ताल्लुक बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, इसको दो लफ्जों में समझाऊं तो समझ में बात आ जाएगी। मटेरियलिज्म के अंदर अगर देखें तो खुशी नहीं है, नेचुरल के अंदर अल्लाह ने खुशी रखी है। हुआ ये कि हमने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जिन चीजों के अंदर सुकून रखा था उसकी बजाय हम दूसरे एंगल से अपने एतबार से सुकून तलाश करने के लिए निकले, खुशी हासिल करने के लिए निकले, नतीजतन सब कुछ होते हुए भी आज हमारे पास खुशी नहीं है, इत्मीनान नहीं है। एक मेजर गलती ये है कि इंसान ने अपनी खुशी को दूसरों पर डिपेंड कर दिया है। मिसाल के तौर पर, ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मेरे बारे में क्या कहते हैं। आप एक आईने के सामने अच्छी तरह से, ये मेरी बहनें इसको समझें खास तौर पर, एक औरत किसी शादी के फंक्शन में जाने से पहले ड्रेस सेट करती है, कौन से कपड़े पहनूं, कौन से मुझे अच्छे लगेंगे, अच्छे कपड़े निकालती है, सब सिलेक्ट करती है, मैचिंग की चूड़ियां सिलेक्ट करती है, सब कुछ सिलेक्ट करके तैयार होकर आईने के सामने आती है और उसे लगता है कि मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। वो सेटिस्फाइड हो गई, उसके बाद निकली शादी में, जैसे ही फंक्शन में पहुंची और किसी सहेली ने कहा क्या पहनकर तुम आई हो, वही उसका मूड चौपट। अरे जब आप मुतमईन हो तो अपनी खुशी को किसी पर डिपेंड क्यों करते हो, आप खुश हैं बस, खुश है खत्म हो गई बात। जब से इंसानों ने अपनी खुशी को किसी और पर डिपेंड कर दिया, खुश नहीं है। और ये बात अच्छी तरीके से जहन में रखें, खुशी के लिए सबसे अहम चीज ये है कि आप दूसरों से अपनी खुशी के सिलसिले में सोचना छोड़ दें, आप सिर्फ ये सोचें जो मैं हूं वो मैं हूं, इस हाल में जो मुझे कबूल करे सुभान अल्लाह, नहीं कबूल करता मुझे कोई जरूरत नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे लोग खुशी से महरूम क्यों होते हैं, वही दूसरों की वजह से, पैसा है नहीं, कैपेसिटी है नहीं, लेकिन दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए इससे कर्ज उससे कर्ज और बन सवर कर। हद तो ये है कि मैं इस पर कोई तफसीली गुफ्तगू करना नहीं चाहता। दुनिया में इस वक्त जितना भी आप देखें ना, इंसान दुनिया ही को खुश करने और दुनिया के सामने बेहतर बनने की पोजीशन में लगा हुआ है। अपनी कैपेसिटी कुछ भी हो, वो अपनी कैपेसिटी का जायजा नहीं लेता, वो सिर्फ इंसान को कैसा लगेगा उसकी फिक्र में लगा है। आपने हमने अगर खुश होना है तो पहले इस जहन को इस तरीके से अपना जहन बना लें कि जो कुछ अपने पास है उससे मुतमईन रहे, जो कुछ है अपने पास उससे मुतमईन रहे, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हमें जितना अपनी किस्मत में, हमारी किस्मत में उसने लिखा था, उसने हमें अता फरमा दिया, और जो हमारा है वही हमारा है। आप हमेशा मुतमईन रहेंगे, अल्लाह के फैसले पर राजी रहें, जो अपने पास है उससे मुतमईन रहें। और इसी के साथ साथ एक और चीज, जैसे है वैसा खुद को समझें, ये बहुत अहम बात अर्ज कर रहा हूं। जैसा है, जैसे हैं हम अनपढ़ हैं तो अनपढ़ समझें, बहुत पढ़ा लिखा ना समझें, हम गरीब हैं तो गरीब समझें कि वाकई हम गरीब हैं, ये नहीं कि हम गरीब हैं और खुद को समझे बहुत होशियार हैं, बहुत अकलमंद। अकलमंद नहीं है तो कहें हम अकलमंद नहीं है, समझें उसको। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये कि होते कुछ है और समझते कुछ है और उसमें फिर ठोकर खा जाते हैं। तो जो हैं वैसा खुद को समझें। और इसी के साथ साथ ये बात भी जहन के अंदर रखना है, अगर आपने अपने आप को ऐसा समझ भी लिया और इस तरह से अपनी जिंदगी आप गुजार भी रहे हैं और आर्टिफिशियल चीजों से खुशी हासिल करने की बजाय नेचुरल चीजों से खुशी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

0: तो यकीन माने आपकी जिंदगी के अंदर खुशी इंशाअल्लाह लजीम अच्छी तरीके से दाखिल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह खुश रहने के उसूल आपने किसी हद तक समझ लिए होंगे। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहाँ की खुशियाँ नसीब फरमाए, ईमान के मिलने पर, इस्लाम के मिलने पर, कुरान के मिलने पर, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलने पर हमें खुशी मनाने की तौफीक नसीब फरमाए, और इसी के साथ साथ गुनाहों से बचने पर हमें खुशी मनाने की तौफीक नसीब फरमाए, और नेकियां करके अल्लाह अज़्ज़ वजल को राज़ी करके हमें खुशी मनाने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल-बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

सामईन कराम, उर्दू प्रोग्राम अनवार महफिल में निसार अख्तर एक बार फिर आपका खैर मकदम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले आपने सुन्नी दावत इस्लामी के रूह रवां हज़रत मौलाना शाकिर अली नूरी दामत बरकातुहु मालिया की ज़बानी एक आलिमाना बयान समात फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब ये नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलायजा फरमाइए।

मोहतरम सामईन, क्यूपिप से मोहतरमा रूबीना का एक पैगाम हमें मौसूल हुआ है। ईसाले सवाब की दरख्वास्त है अपने अब्बू मरहूम अब्दुल मन्नान चुनू के लिए और ख़ास अपने भाई मरहूम रियाज खान चुनू के लिए, जिनका इंतकाल माह मुहर्रमुल हराम की 15 तारीख को हुआ था। तो हम दुआ करते हैं कि चुनू फैमिली में जितने भी लोग इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन। सामीन, याद रखिए अनवार महफिल प्रोग्राम आज 11 बजे तक जारी वसारी रहेगा। आप 11 बजे तक अपने पैगामात हम तक पहुंचा सकते हैं 5251700 5251700 तक, हमें आपके पैगामात का इंतज़ार रहेगा। अगला पैगाम न्यू ग्रोव से मोहतरमा फातिमा की तरफ से एक कलाम की फरमाइश आई है, हज का एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत कलाम है। तो आइए ये अगला कलाम उनके नाम।

सामईन कराम, दो आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सितारे आसमान वालों के लिए बायस अमन हैं और मेरे अहले बैत मेरी उम्मत के लिए बायस अमन हैं। सामईन, इस हदीस मुबारक के साथ ये अगला कलाम आपकी समागतों की नज़र पेश करते हैं। इसके बाद ठीक 10 बजे आप समाचार सुन पाएंगे, लेकिन हमसे जुड़े रहिए क्योंकि समाचार के बाद भी अनवार महफिल प्रोग्राम जारी व सारी रहेगा।

0: आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अर्शिता के साथ। आपको नमस्कार अर्शिता।
1: नमस्कार हंसिनी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में एक बार फिर स्वागत है सबका। कृपया आर्य समाज के सदस्य कल अपने नए आर्य मंदिर के उद्घाटन के लिए एकत्र हुए। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने एक विशेष समारोह में भाग लिया, जहाँ वैदिक मंत्रों का उच्चारण और यज्ञ का आयोजन किया गया। तीसरे मेस्टिजोथिस का आयोजन आज 5 जुलाई सुबह 11 बजे क्यूपिप में स्थित पावा सेंट तेरेज में किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का आयोजन पोर्ट लुइस ज्यूसेस और यूनियन ऑफ ऑटिस के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। इस विशेष प्रार्थना सभा की अध्यक्षता मोसिनियर जो मिकाएल जोन करेंगे। इस समय विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों के साथ साथ वे सभी लोग शामिल होंगे जो मॉरिशस के समाज में कलाकारों के योगदान को सम्मान देना चाहती है। 2024 में शुरुआत की गई मेस्टिजोथिस पहल का उद्देश्य चर्च और सांस्कृतिक जगत के बीच संबंधों को और मजबूत बनाना है। ये आयोजन समाज में कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने के साथ साथ आपसी भाईचारे और एकता की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। फ्रांस के लोकप्रिय गायक क्रिस्टोफर माए अपनी अंतर्राष्ट्रीय संगीत यात्रा के तहत एक बार फिर मॉरिशस आ रहे हैं। सिताडेल में अपने पहले कंसर्ट के लगभग 20 वर्ष बाद वे 21 फरवरी 2027 को त्रियानो कन्वेंशन सेंटर में मंच पर प्रस्तुति देंगे। क्रिस्टोफर माए अपने चर्चित गीत ऊं सताश रेली से लोर्स बुके दे रोज और लॉम्बे दुसा के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। कंसर्ट के टिकट 900 रुपये से शुरू होते हैं और उतायों के माध्यम से उपलब्ध की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित एक प्रमुख तेल टर्मिनल पर रात भर ड्रोन हमला किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये ऐसा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है जिससे रूस को युद्ध के लिए आर्थिक संसाधन प्राप्त होते हैं। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि इस क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख रूसी नौसैनिक अड्डे को भी निशाना बनाया गया है। हाल के महीनों में यूक्रेन ने रूस के ऊर्जा ढांचे पर लंबी दूरी के ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। कीव का दावा है कि इन हमलों से रूस की लगभग 43% तेल शोधन क्षमता प्रभावित हुई है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। यूक्रेन का कहना है कि रूस के तेल और गैस प्रतिष्ठान वैध सैन्य लक्ष्य हैं, क्योंकि रूस अपने युद्ध अभियान के लिए जीवाश्म ईंधन के निर्यात पर काफी हद तक निर्भर है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घरेलू ईंधन आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से एक नए विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। और बात एक बार फिर करते हैं फीफा विश्व कप 2026 की। राउंड ऑफ 16 मुकाबले में फ्रांस ने पराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस की ओर से कप्तान किलियान एम्बापे ने पेनल्टी पर मैच का एकमात्र गोल दागा और अब फर्स्ट क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला गुरुवार को बोस्टन में मोरक्को से होगा। मोरक्को ने राउंड ऑफ 16 में सस मेजबान कनाडा को 3-0 के स्कोर से हराकर अंतिम आठ में प्रवेश किया है। अब राउंड 16 में ही अगले मैच जो निर्धारित हैं, आज रात 12 बजे ब्राजील खेलेगा नॉर्वे के खिलाफ, मेक्सिको खेलेगा इंग्लैंड के खिलाफ जो होगा कल सुबह 4 बजे, और कल रात 11 बजे पोर्चुगल खेलेगा स्पेन के खिलाफ। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

यूं ही नहीं जहां मैं चर्चा हुसैन का, कुछ दे के हुआ है जमाना हुसैन का। यूं ही नहीं जहां मैं चर्चा हुसैन का, कुछ देख के हुआ है जमाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदिया हुसैन की।

मेरे अजीज सामईन, आपको बता दें कि खास उर्दू प्रोग्राम अनवार महफिल 9 बजे से सजा हुआ है। जो सामईन अभी अभी हमसे जुड़े हैं, इस रूहानी काफिले में निसार अख्तर एक बार फिर आपका खैर मकदम करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहु। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम माह मुहर्रमुल हराम के फजाइल, बिलखुसूस अहले बैत अतहार पर गुफ्तगू फरमा रहे हैं। और सामईन, इसके साथ साथ आपके पैगामात और फरमाइशें भी इस महफिल की जीनत बनी हुई हैं। जल्दी से फ़ोन उठाइए और हमें पैगाम भेजिए 5251705 5251705 पर। तब तक के लिए ये अगला कलाम मुलायजा फरमाइए।

की शान व अज़मत पर बात करेंगे। दरअसल हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों शहज़ादों हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाहु तआला अन्हु से बेहद बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे और उन्हें ज़रा सी तकलीफ़ में मुब्तला देखना पसंद ना फरमाते। यकीनन हसनैन करीमैन करम व शफ़क़त के बाग के महकते फूल हैं। सामईन, अब मरहूम हबीब नज़ीर अली की मुतर्रनुम आवाज़ में ये अगली नात शरीफ़ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मुलायजा फरमाएं।

मोहतरम सामईन, आइए पैगामात का सिलसिला जारी रखते हैं। काटकुकु से मोहतरमा कुरैशा जहालिया की तरफ से एक पैगाम हमें आया है। काटकुकु की मस्जिद में इमाम सलीम अख्तर मंगलोल इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। पिछले साल उनका इंतकाल हुआ, यानी फ़िलहाल एक साल गुज़र चुका है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इमाम साहब की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन। कौन शापलों से मोहतरमा नुगेज़ा ने एक कलाम की फरमाइश की है, तो ये अगला कलाम उनके नाम।

सामईन कराम, अमूमन जब कोई बच्चा पैदा होता है तो अकीका उसके वालिदैन करते हैं, मगर जब हज़रत सैदना इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की विलादत हुई तो उनके वालिदैन ने नहीं बल्कि उनके नाना जान रहमत आलिमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों का अकीका फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बकरियां अकीके में ज़बह फरमाईं। सामईन, इन अहादीस मुबारका से ये साफ जाहिर होता है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से कैसी मोहब्बत फरमाते थे।

सामईन कराम, आपको याद दिला दें कि इस वक्त आप निसार के साथ खास प्रोग्राम अनवार महफिल समात फरमा रहे हैं। आइए पैगामात का सिलसिला जारी रखते हैं। मरहूमा सफूरा इमाम बख्श, मरहूम सिद्दीक दस्त मोहम्मद और

मरहूम मजहर दस्त मोहम्मद के लिए ख़ास दुआए इसाले सवाब। और दस्त मोहम्मद फैमिली में जितने भी लोग इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनकी मगफरत फरमाए, आमीन। अगला पैगाम क्यूपिप से मोहतरमा फरनाज जुमन ने इसाले सवाब की दरख्वास्त की है। अब्बू अनवर हुसैन, दादा मजीद अमृत, दादी हलीमा अमृत और जीजा नौशाद सुबहन के लिए, तो जितने ये नाम हैं, अल्लाह तबारक व ताला इन मरहूमीन की मगफरत फरमाए। और आखिर में मोहतरमा फरनाज ने कलाम की फरमाइश की है, तो ये अगला कलाम उनके नाम।

सामईन कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले बैत में सबसे अजीज़ और महबूब हसनैन करीमैन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शहजादों को अपने कंधों पर सवार किया करते थे, हत्ता के नमाज में सजदे की हालत में दोनों नवासे पुश्तियाथर पर सवार होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा तवील कर दिया करते थे, और जब सजदे से सर अकदस उठाते तो उन्हें आराम से ज़मीन पर बिठा देते।

मोहतरम सामईन, आइए पैगामात का सिलसिला जारी रखते हैं। लावेनिया सैपियर से मोहतरमा आफेज़ बाबा साहेब अपने शौहर मरहूम हसन बाबा साहेब के लिए इसाले सवाब की दरख्वास्त पेश करती हैं, जिनको इंतकाल हुए 8 साल गुज़र चुके हैं। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मरहूम हसन बाबा साहेब और ख़ास बाबा साहेब फैमिली में जितने भी लोग इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। क्यूपिप से मोहतरमा फौजिया अपने शौहर मरहूम गिशाद तुगाबाली के लिए इसाले सवाब की दरख्वास्त पेश करती हैं। उनके बच्चे मुस्लिमा यासिर, मुजफ़र, मरियम, जिनारा और अम्मारा की तरफ से ढेर सारी दुआएं। आइए सामईन, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का ये कलाम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, मुलाइजा फरमाएं।

सामईन कराम, आला हज़रत रहमतुल्लाही के इस कलाम के साथ हमारी आज की ख़ास उर्दू नशरियात अनवार महफिल अख्ताम पज़ीर होने वाली हैं। 9 से 11 बजे तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया, बिलखसूस आप लोगों ने हमें अपने पैगाम भेजे, इस मोहब्बत और हम नशीनी के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज हमने माह मुहर्रमुल हराम की शान अज़मत और अहले बैत अतहार पर बात की। अल्लाह पाक हमें इस महीने में खूब इबादत करने और अजर व सवाब कमाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अपने इस खाकसार नागुद निसार को अब इजाज़त दीजिए, ऐसे ही साथ देते रहिएगा, निसार को भी अपनी दुआओं में शामिल कीजिएगा। आपसे रुख्सत होने का तो दिल नहीं करता, मगर क्या करें, यही दस्तूर है। पर वादा है कि अगले इतवार को फिर हमारी

0: 819 किलोहर्ट्ज़ पर, रेडियो मॉरिशस।
1: मॉरिशस वाले पड़े दे सरिया के काले 11 மணி ஆகிறது।

குள்ள கொய்யங்கேதே.

0: Number one, number one.
1: Album Tully Bogre.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: आइए सुनते हैं एक विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सूरीनाम के रहने वालों को, विशेषकर मोसेलमा गोबिन सूरीनाम के रहने वालों को सूचित करता है कि बुधवार 8 जुलाई 2026 सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बिजली की आपूर्ति में कटौती होगी। सभी मरम्मत कार्यों के बाद बिना किसी पूर्व सूचना की बिजली की आपूर्ति फिर से जारी कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी एक विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से।
3: శ్రోతులకు హృదయపూర్వక నమస్కారం. ముత్యాల సర్వాలు అన్న తెలుగు కార్యక్రమం ఈ సమయం

听众朋友，这是毛利求是广播电台886频道，今天又到了华语歌曲欣赏节目时间，下面请大家一起来欣赏几首优美的歌曲。

0: 听众朋友，防疫局剧情上节目差不多接近尾声，又要同各位听众朋友告别了。我等您在下次同一节目时间再见。
1: Time.

0: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: रविवार 5 जुलाई घड़ी मिला लीजिए, सपेर के 4 बज रहे हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से ये ज़रूरी विज्ञप्ति सुन लीजिए। सीबी इन जगहों पर रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। सीबी ऑगी इजिडो रोज यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है, खासकर एमपीआई ऑगी सीडब्ल्यूए ऑगी इजिडो रोज विलाज यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर इस मंगलवार आते मंगलवार 7 जुलाई को सुबह के 8:45 से मंगलवार सुबह के 8:45 से शाम के 5 के बीच यहां पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी एक ज़रूरी विज्ञप्ति सीबी की ओर से।
0: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: हम और आप
1: रविवार 5 जुलाई घड़ी मिला लीजिए, सपेर के 4:02 रेडियो मॉरिशस पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हम और आप इसे लेकर हम आ गए हैं आपकी सेवा में, आपका साथ देने के लिए। अभी से लेकर शाम के 5 तक हम और आप ये प्रोग्राम चलेगा और 5 से 6 के बीच आप सुन पाएंगे तो हर पसंद इस कार्यक्रम को। चलिए, बहुत दिनों बाद हमें अवसर मिला है कि इस कार्यक्रम में आपसे जुड़ने का, तो हमें भी बड़ी खुशी हो रही है। मैं हूँ सुमी और 6 तक आपका साथ हम देने वाले हैं। आशा करते हैं कि ये जो सप्ताहांत है, ये जो वीकेंड है, जो रविवार का दिन है, आप लोगों के लिए अच्छे से बीत रहा होगा। ऐसे इस और मौसम की बात करें तो सवेरे से जो है हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, हल्की सी ठंड है, रह रहकर कभी कभार हल्की सी बूंदें भी बरस रही है। उम्मीद करते हैं कि आपके यहाँ मौसम अच्छा होगा। और बदलते मौसम में ना हर कोई बीमार पड़ता है, सर्दी खांसी जुकाम, और हमने सोचा कि हम और आप इस कार्यक्रम में आज किस विषय को लेकर आए। बहुत सोचने पर हमने सोचा कि ये कार्यक्रम तो हमारे बड़े बुजुर्गों से जुड़ा हुआ है और घरेलू नुस्खों की बात करें कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम घर ही में जो है चीज़ों का प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज सोचा थोड़ा इस पर बात करें। आप बताएं कि ठंड के मौसम में किन तरह के चीज़ों का सेवन आप करते हैं, किस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रखते हैं और अपने परिवार को स्वस्थ रखते हैं। बहुत से लोग जो है शहद और गर्म पानी पीते हैं, बहुत से लोग

काढ़ा बनाकर पीते हैं, बहुत से लोग ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जो प्राकृतिक तौर पर जो है गर्म होते हैं, जैसे कि अदरक की बात कर ले, मसालों की बात कर ले। तो आप बताएं कि इस बदलते मौसम में किन चीज़ों का प्रयोग आप करते हैं, कौन से ऐसे घरेलू नुस्खे जो है आप आज़माते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए और अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए। तो चलिए अभी के लिए इस गाने के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और फिर शामिल करेंगे आपकी फ़ोन कॉल्स 4028080 पर।

0: और आप, हम और आप।
1: चलिए हम और आप इस प्रोग्राम में आप सभी जुड़ चुके हैं और यहाँ पर आपकी फ़ोन कॉल्स की मानो बरसात हो रही है। हमने पूछा कि बदलते मौसम में कौन सी ऐसी चीज़ों का उपयोग आप करते हैं, कौन से ऐसे जो है दिनचर्या में आपने चीज़ें शामिल की है जो आपको स्वस्थ रखने में आपकी सहायता करता है, अपने परिवार को स्वस्थ रखने में जो है आप इसे इस्तेमाल करती है। तो चलिए फ़ोन कॉल्स की ओर बढ़ते हैं हम और देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार श्री जी।
1: नमस्ते हरीश जी, कैसे हैं?
2: हरीश
1: जी, जी जानते हैं कैसे हैं हरीश जी,
2: क्योंकि बहुत दिनों के बाद आपको मौका मिल रहा आपसे बात करने की।
1: जी, खासकर इस प्रोग्राम में
2: मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात करने के।
1: बहुत धन्यवाद।
2: और ये जो विषय रखा आपने
1: जी,
2: मैं कहूँगा श्री जी,
1: जी
2: जितने भी प्रिकॉशन हम ले सकते हैं
1: जी,
2: उसके बावजूद
1: जी,
2: जो कि उम्र का तकाजा है
1: जी,
2: जैसे आपने कहा
1: जी,
2: हम जो लगभग सभी लोग जो बात पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोग्राम में
1: जी,
2: हम बुजुर्ग हैं।
1: एजेंट
2: मैं मोर देन 70-74 होने जा रहा हूँ, 75 होने जा रहा हूँ, 75 ईयर्स ओल्ड। तो इस उम्र में तो हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए, हम लेते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको। सवेरे पहली चीज जो हम लेते हैं, एक बार सप्ताह में एक बार
1: जी जी,
2: जैसे बोलते हैं सफ़ेद
1: जी जी,
2: अदरक
1: जी,
2: और थोड़ा सा मध
1: जी,
2: उसको उबाल कर उसको जो मिक्स होता है, उसको लीकर जो मिलता है
1: जी,
2: गर्म ही
1: सप्ताह में एक बार ये आप जरूर करते हैं।
2: सप्ताह में एक बार करता हूँ।
1: अच्छी बात है,
2: ये फॉर द इम्यून सिस्टम टू रिमेन स्ट्रॉन्ग।
1: हाँ, और अभी तो बहुत जरूरी भी है क्योंकि बदलते मौसम में जो है हमारा स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है, हम जल्दी जो है सर्दी जुकाम हमें पकड़ लेता है, है ना।
2: और जो अब जो फ्रूट है
1: जी,
2: जो हम नहीं खरीदते थे पहले, इस मौसम में
1: खरीदते हैं।
2: कीवी है, मैंडारिन है
1: जी जी,
2: ऑरेंज है
1: जिसमें विटामिन सी ज्यादा होता है।
2: लगभग हमको रोज एटलीस्ट वन फ्रूट लेना चाहिए
1: जी।
2: हम लेते हैं।
1: चलिए, अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद हरीश जी, आपसे बात करके हमें भी बड़ा अच्छा लगा। नमस्ते। चलिए, हमने पूछा कि बदलते मौसम में किस तरह से आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, क्या ऐसे चीज़ें आप करते हैं जिससे आप अपने आप को और अपने परिवार वालों को जो है हेल्थ के बारे में ज़्यादा जागरूक करते हैं, कौन से ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं। हरीश जी ने तो ढेर सारी बातें कही, आप बताएं कि आपके पास कौन सा ऐसा नुस्खा है जो आप आज़माते हैं। हेलो जी, नमस्ते। हेलो जी, नमस्ते।
3: नमस्ते।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
3: मैं हूँ दीला मोलासू से।
1: कैसे है भाई दीला?
3: सब चल रहा है।
1: चलिए, अच्छी
3: सब
1: बात
3: चल
1: है।
3: रहा है, ठीक से चल रहा है।
1: बहुत अच्छी बात है।
3: रुका सूखा खा कर जीवन जा रहा है।
1: अच्छा, आज के इस विषय पर आप कुछ जोड़ना चाहेंगे भाई जी?
3: हाँ
1: जी, बोलिए।
3: तो एगो बैलेंस डाइट चाहेला खाई के
1: जी,
3: एगो बैलेंस डाइट और हॉट मिल चाहला खाते रहे के, हॉट ड्रिंक्स
1: जी, गरम चीजें।
3: और है जेजाम हम तो हर तीन दिन में भाई बुई करके पीला है, मेथी सब बुई करके पीला
1: जी।
3: और जेपिस चाहला बहुत खाए के, कहे जेपिस बहुत गरम है।
1: हाँ।
3: कैसे ज्वायो बा, एपिस एन जेनेरल बा, पीमों बा, और आई काफे बा और जीते बाई फजीर के गरम गरम बहुत अच्छा है। लासोते के
1: जी
3: बहुत अच्छा है। और हाई एफिजियों है, एफिजियों एफिजियों में ढेर कहते बा, जब हम लोटेल काम करे थे टूरिस्ट लोग ढेर अति में ठंडा में पिया था रंसा
1: जी जी,
3: हम ऑब्जर्व ढेर एफिजियों ढेर है। ओकर ओरिजिन है ला फ्रांस से।
1: अच्छा।
3: बहुत एगो निमन चीज है लासोते के,
1: ओके,
3: एंटी कैंसरिये है एफिजियों। ला फ्रांस से आवेला डायरेक्टली वहीं पर ही ओकर प्लांट्स वहीं जस्ती प्लांटे लन सा।
1: अच्छा।
3: बस फिर हम जब काम करे थरी बॉमेन काम करे थरी
1: तो
3: हाउस ऑफ डाइट हाउस ऑफ एफिजियों वहां ला फ्रांस से आवा था, मेड इन फ्रांस से जस्ती
1: जी जी जी,
3: समझ लो
1: जी।
3: और एगो त्रिको और मोल्टो चाहना पहने के शाम के बेरा
1: जी,
3: समझला जमे अति तह गरम रही तो लिखो और एगो एगो साफे बहुत ऐपो तो हाँ।

0: बिलियन साला सबके निमन से रखे के हाँ एगो बड़ा चीज है और बहुत फ्रीडम में चाला खाई के फ्रीडम में पसीला में के चीज बहुत सोचिस हो लेकिन सलाद और भाई जब खाइबा तो झल्ला एगो सलाद दा तो लाबा सीटो पर जस्ती अच्छा हाँ ई बहुत ही वो कामिल चीज है ठंडा के लिपोक
1: ओके
0: और भाई कानेल है कानेल बहुत एगो बढ़िया चीज है कानेल ओकर लापुडुओ बेचाला ओकर
1: जी
0: अलग अच्छो बेचाला ओकर
1: जी
0: समझला ओकरा चाम में काफे में गरम पानी में दूध में पीबा तो ई बहुत ही लासौते के बहुत बढ़िया चीज है
1: जी जी जी
0: समझला
1: जी
0: हाई सलाद बहुत बढ़िया चीज है सलाद
1: जी
0: सलाद
1: जी
0: समझला
1: हाँ
0: चाहे जब जब सब अच्छी कर बन निमन से और वह एगो और एगो जैसे व्यय पो तो हाँ
1: जी
0: हमेशा की ओकर ठंडा ओकर गरम में
1: हाँ
0: बैलेंस डाइट खाइए तो मैं
1: बिल्कुल
0: और मौजवा में बैलेंस से रही
1: जी
0: अब नहीं बोला खाली गोश्त खाइते रह रोज रोज गोश्त खाइते रह मैं सलाद नहीं बा ओकर मैं एगो बूटा अच्छी नहीं बा फ्रीजे में नहीं बाइट नहीं अच्छा बानो
1: जी
0: लासों के बहुत खराब हो
1: जी मतलब कि सभी चीजें
0: समझ
1: आपके
0: एगो
1: खाने
0: हमने के
1: पीने
0: हाई
1: में
0: एगो
1: होनी
0: अच्छी ओवर
1: चाहिए।
0: एप्लीकेशन हो जाए हमने के लिए को मैं
1: जी
0: तहवे देखबा जाबे जस्ती हो गल बा टोंसियो मोते हो गल बा
1: जी
0: मलाड लेके हो गल बा
1: जी
0: कोलेस्ट्रॉल एक्सेस हो गल बा समझ लो
1: जी
0: त हई कोते सीटों में जब यति कोई कई सलाद जूत खाइबा त तरी काट देवेला हई एगो बड़का पोआजो यति के कोलेस्ट्रॉल के आबाज सीटों
1: ओके
0: हां और वही एफिजियो बहुत एगो बहुत कामे चीज है तो हम जब काम करे थे लोटेल में तो टूरिस्ट लोग से पूछले तब बोले हाँ एगो बहुत बहुत कामिल चीज है बोले खाली ला फ्रांस चावेला तो हम पिया थरी तो देख ली एक्सपीरियंस कर ली तो देख ली हाँ बहुत अच्छी बात है ये बार एगो सोता बा और हम सब सोता लोग के रिमे ऐसे कर रहा था तोरो रिमे ऐसे कर रहा था लेकिन एम्बेसी के रिमे ऐसे कर रहा
1: बहुत
0: है जन
1: धन्यवाद
0: प्रोग्राम देता बहुत बढ़िया बा हाई जन
1: धन्यवाद
0: विषय बा बहुत बढ़िया बा
1: बहुत
0: सुन के है
1: धन्यवाद।
0: बगल हम बगल कान से नहीं निकाल दिया ओकरा
1: हाँ
0: सुन के दिमाग में रखे और ओकरा प्राचिक में डाला तो वह
1: जी
0: समझ और सब हम रुपये आदमी आपके हम बहुत खुशी रहेला बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद भाई दीला, आपके समय के लिए और इतनी सारी जानकारियों के लिए जो आपने हमें दी। नमस्ते कहेंगे आपको, शुभ संध्या हम कहेंगे। तो चलिए, यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं बदलते मौसम के साथ किस तरह का बदलाव आप अपने खान पान में लाते हैं, किस तरह का जो है जीवन शैली आप अपनाते हैं ताकि आप अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रख पाए। चलिए, अभी के लिए एक गीत के साथ प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं और फिर एक गाने के बाद कुछ और फ़ोन कॉल्स हम शामिल करेंगे।
2: हम और आप

0: हम और आप, हम और
1: अजी, हमें पूरा यकीन है कि हम और आप इस प्रोग्राम से हमारे सभी सुनने वालों को प्यार है। ऐसे कोई नहीं है जो इस प्रोग्राम को नहीं पसंद करते हैं। और चलिए, आज का हमारा जो विषय है वो भी हमने सोचा क्यों ना मौसम से संबंधित रखे, क्यों ना हेल्थ से संबंधित रखे, क्यों ना हमारे स्वास्थ्य से संबंधित रखे। तो चलिए, यहाँ पर अगले श्रोता से हम मिलते हैं। हेलो, नमस्कार।
2: हेलो, नमस्कार सुमित जी।
1: नमस्ते राधा जी, कैसी हैं आप
2: जी? अच्छी हूँ, ठंड है थोड़ा अभी। हाँ। शाम का समय है ना
1: तो चलिए अब बताएं कि ठंड के वक्त आप कौन सी ऐसी चीजें करती हैं जिससे आप हेल्दी रहती हैं?
2: हाँ, ज्यादा मैं क्या बोलूँ, मैं रसम पीना पसंद करती हूँ खास।
1: हाँ, वो गर्म होता है।
2: हाँ,
1: काफी।
2: हाँ, वो गर्म होता है क्योंकि उसमें हम वो चिलानी, वो काली मिर्च डालकर आदि अच्छी तरह से बनाते हैं। कुछ लोग पानी का बनाते हैं, कुछ लोग कच्चू के पत्ते को उबाल कर उसके पानी से बनाते हैं। और उसमें थोड़ा तीखा होना चाहिए वो, और उसे गरम गरम ही पीना चाहिए, ताकि वो खासकर शाम के समय, रात में पीना चाहिए, ताकि आपको गर्मी पहुंचाए। ये मैं बहुत छोटे से, हमें पता है दादी नानी लोग बनाते थे। और वो अज्ञाखर जिसको हम बोलते हैं,
1: अज्ञाखर,
2: हाँ, उसका तो जो सुगंध है, जब वो उबलता ही है जो सुगंध उसकी उठती है
1: जी,
2: तो मतलब कि चाय की जगह में आप उसी को ले सकते हैं। खूब गरम गरम वो बहुत ही अच्छी औषधि है। कुछ लोग उसमें थोड़ा सा हल्दी, वो क्या है, अदरक डाल देते हैं। कुछ लोग ऐसे ही बनाते हैं। वो बहुत ही अच्छी औषधि है। अभी के लिए तो हमारे यहाँ तो थोड़ा कम है, हमारे गाँव में भी नजर नहीं आता है, पहले थी, लेकिन जहाँ पर होगी वो बहुत ही फायदेमंद है। देखिए सुमित जी, प्रकृति ने तो हमें बहुत सी औषधियाँ दी है, लेकिन हमें इस्तेमाल करना चाहिए उसका। जब हमें पता

0: चलेगा कि इसका क्या फायदा है। तो
1: बहुत
0: बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है ठंड के मौसम में, ठंड की औषधियाँ के बारे में।
1: धन्यवाद। इनफैक्ट आपने सही
0: हाँ
1: कहा कि कभी कभार ऐसा होता है कि जब भी हल्के से हमें कोई बीमारी पकड़ लेती है या कुछ भी चोट आ
0: हाँ
1: जाती है, तो सबसे पहले ऐसा होता है ना कि डॉक्टर के पास जाने के पहले हम घर ही
0: हाँ
1: में कुछ जो मिलता है उसका उपयोग करते हैं, और ये
0: हाँ
1: सदियों से
0: हाँ
1: हम करते आए हैं, ये आज की
0: करते
1: बात
0: आज
1: नहीं है।
0: बहुत दिनों, क्योंकि पहले के जमाने में हमको चोट लगती तो वो है ना बिरजामीन जिसको बोलते हैं, अभी पता नहीं मिलता है या नहीं, वो माँ पीस देती थी, उंगली में लगा देती थी, थोड़ी घड़ी में वो
1: हाँ, मुझे तो पता
0: मतलब
1: है कि
0: से ठीक
1: बचपन
0: हो
1: में हल्का
0: जाता,
1: सा चोट लग गया तो थोड़ा सा हल्दी का पाउडर जैसे मम्मी
0: हल्दी
1: लेकर
0: या
1: लगा देती थी, क्योंकि
0: हाँ वो ठीक हो जाता।
1: पहले जो मसाले मिलते थे उसमें मिलावट नहीं होती थी, शुद्ध होता था,
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: ना।
0: एकदम तरोताजा होती
1: हाँ
0: थी वो, लेकिन अभी कुछ लोग नहीं जानते हैं, नहीं जानने के कारण लोग केवल डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन औषधियां है हमारी
1: ऐसी बात
0: उसको
1: नहीं
0: इस्तेमाल
1: कि
0: करना
1: आपको डॉक्टर
0: चाहिए।
1: के पास नहीं जाना चाहिए, वो भी
0: नहीं
1: जाना
0: जाना
1: चाहिए।
0: चाहिए,
1: हाँ
0: मतलब कि ऐसे
1: हाँ
0: समय आए जबकि जाना
1: हाँ
0: ही है तो जाना है,
1: हाँ
0: लेकिन
1: बिल्कुल
0: छोटे
1: बिल्कुल
0: मोटे इसे सर्दी खांसी हो गई या
1: जी।
0: सर्दी जुकाम, तो उसका उपचार घर ही में हम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, कहते हैं ना
0: हाँ
1: प्रिकॉशन लेना ज़्यादा
0: हाँ
1: बेहतर
0: क्यों
1: होता
0: नहीं,
1: है। हाँ
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: चलिए, बहुत
0: हाँ
1: अच्छा लगा राधा जी
0: बहुत
1: आपसे बात
0: धन्यवाद
1: करके,
0: आपको,
1: और
0: शुभ
1: आप
0: संध्या,
1: जल्दी से स्वस्थ हो
0: शुभ
1: जाए
0: रात्रि। हाँ
1: ये
0: हाँ
1: कहेंगे।
0: जी जी
1: अच्छा,
0: धन्यवाद,
1: नमस्ते जी,
0: नमस्कार
1: नमस्कार। चलिए, यहाँ पर तारा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हेलो, नमस्ते तारा जी, कैसी हैं आप?
2: नमस्ते, ठीक है हम, आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल ठीक है तारा जी, बताइए आप क्या जोड़ना चाहती हैं?
2: हाँ ठंड लगते हैं ना।
1: हाँ
2: अभी तो हो महीना में ज्यादा ठंड करेगा।
1: बिल्कुल जी, बताइए आप क्या
2: हाँ
1: करती हैं ठंड के मौसम में ताकि आप
2: हम ठंड
1: हेल्दी
2: के
1: रहे?
2: मौसम में सवेरे पका के जाते हैं, सब्जी किनने से
1: जी
2: मार्केट जाते हैं, बाजार
1: जी
2: जाते हैं, सब सवेरे किन के आनते हैं, जल्दी
1: जी
2: जल्दी जल्दी
1: जी
2: जल्दी किन के आन के हैं, पका के थोड़ा ज़्यादा उतना चावल नहीं खाते हैं, थोड़ा रोटी पकाते हैं, दाल पकाते हैं, भाजी उजी ऐसे सब पकाते हैं, सब्जी और चाय पीते हैं, चाय के अदरक डाल के, हवे
1: हाँ
2: जन बहन बोलते हैं वो सितोनेल,
1: जी जी
2: थोड़ा ठीक लगेगा वो सब चाय में सब डालते हैं तब, उसे पीने चाहिए, और गोर में सुसेद डालना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने।
2: हाँ वो सगरों मॉब में हो ठंड लगते हैं ना बहुत,
1: जी
2: सुसेद डालना चाहिए, पालतू डालना चाहिए, सर पर वो टोपी डालना चाहिए, जो
1: हाँ
2: आदमी एटी उम्र होला
1: जी
2: आर कोई के तो मालूम नहीं, उस ठंड नहीं लगते हैं। तो हम लोग के ठंड लगते हैं ना, हम लोग उम्र होला
1: हाँ।
2: है जाना।
1: तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तारा
2: हाँ
1: जी, आप हमारे साथ जुड़ी और इतनी सारी बातें आपने हमारे साथ बांटी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार आपको।
2: धन्यवाद।
1: चलिए, 4028085 है नंबर हमारा, और हम जो है यहाँ पर एक और गीत के साथ प्रोग्राम को आगे ले जाएंगे, और बस आपका साथ हमें यूँ ही मिलता रहे। आज हम बात कर रहे थे कि इस बदलते मौसम में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करते हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को स्वस्थ रखती है, छोटी मोटी सर्दी खांसी बीमारियों से अपने आप को दूर रखती है, कैसे नुस्खों की हम बात करते तो दादी नानी के पास जाते हैं ना घरेलू नुस्खों के लिए, तो आज इन्हीं नुस्खों को हम आपसे जानना चाहते हैं। तो बेशक आप हमें ऐसे ही कॉल करते रहिए 4028085 पर। एक छोटे से गीत के साथ जो है इस कार्यक्रम को हम आगे ले जाते हैं, और फिर कुछ और फोन कॉल्स हम शामिल
2: हम
1: करेंगे।
2: और आप
3: दीवाना,
4: एक दीवाना शहर में,
3: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी,
4: दो दीवाने शहर में,

0: हम और आप
1: चलिए यहाँ पर गानों के साथ साथ आपकी बातें, आपके जो अनुभव है जो हमारे साथ यहाँ पर आप बांट रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता की ओर हम बढ़ते हैं। हेलो नमस्कार। नमस्ते जी, कौन बोल रही है? ये प्यारी सी आवाज किसकी है?
2: मोगू से नंदिनी नेपाल।
1: कैसी है नंदिनी जी?
2: अच्छी हूँ, आप कैसी?
1: हम भी बिल्कुल ठीक है।
2: टीवी में देखते हैं, बहुत अच्छी लगती हूँ।
1: धन्यवाद जी। अच्छा बताए कि आज क्या जोड़ना चाहेंगे
2: हम आप
1: जी?
2: इसलिए मैं बताना चाहती हूँ, हम जो हम से अभी कर लिया।
1: अच्छा,
2: जो मैं आप भी से अभी कर पा।
1: हाँ बोलो।
2: ऐसा नहीं, वो चाय बने देखियो, केवल पत्ता बोला था, पान
1: जी,
2: अग्यखर
1: जी,
2: तुलसी
1: जी,
2: अलामोट।
1: ओके
2: हाँ, है पत्ता हो गल बेटी। अब कंचा हरदी, एगो बूट अदरक अभी लिवे बात कहीं पिए के, और गोलानी।
1: ओके
2: कानेल और चाय, इतना सब डाल के जितने मसाला है के बोली ला सब, जितना कोई आवेला हमारे यहाँ रामायण सीखे सिखाईला रामायण बेटी।
1: अच्छा।
2: सो ही बोलत है सब कोई के बोली ला, सब कोई अच्छा हो जाला पी के।
1: ओके
2: सांत बखत हो, बहुत धन्यवाद मौका दिला।
1: बहुत धन्यवाद। तो इसको क्या पानी में सब मिला?

0: कर बॉईल करते हैं नंदिनी
1: हाँ
0: जी।
1: बॉईल करते हैं, बॉईल। जब बॉईल हो जाएगा
0: हाँ
1: तब उसमें चाय की पत्ती डालो।
0: अच्छा, यानी कि इसमें दूध
1: हाँ
0: नहीं जाता है, इसमें सिर्फ चाय की
1: नहीं
0: पत्ती
1: दूध
0: जाती
1: नहीं
0: है।
1: जाता, केवल
0: अच्छा
1: चाय की पत्ती।
0: अच्छा जी
1: अब आप चाहोगे तो थोड़ा पीने के समय अपना एक थोड़ा सा दूध डाल दो।
0: ओके।
1: हाँ धन्यवाद बहन
0: बहुत
1: जी,
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: नंदिनी जी,
1: धन्यवाद।
0: आपको शुभ
1: कोई बात
0: संध्या
1: नहीं,
0: हम
1: शुभ
0: कहेंगे
1: संध्या आपको भी।
0: जी। चलिए एक और श्रोता से हम मिलते हैं। हेलो नमस्कार।
2: हेलो नमस्ते बहन जी,
0: नमस्ते भाई धनेश्वर जी, कैसे हैं?
2: मैं ठीक हूँ। आपकी आवाज़ सुनकर बहुत खुश होता हूँ।
0: हमें भी बड़ी खुशी होती है आप लोगों से बात करके, और आशा करते हैं आप बिल्कुल अच्छे हैं। बताइए क्या जोड़ना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में।
2: तो बहन जी मैं अपना विचार देता हूँ।
0: जी
2: सभी लोग बहुत अच्छा विचार दिया है।
0: जी
2: तो दुख की बात यहाँ पर है, 15-16 साल से वृद्ध लोगों को सरकार मुलतों कमली नहीं देता है और ठंड के कारण से हड्डी में जुलिया हो जाता है। धन्यवाद।
0: चलिए धन्यवाद भाई जी आपके विचार के लिए। ऐसे हमारा जो विषय आज ये नहीं था जिस पर आप बात कर रहे हैं, और हम ऐसे किसी पर टिप्पणी भी नहीं करते हैं, लेकिन चलिए आपने कहा पर आज हमारा जो विषय है हम घरेलू नुस्खों पर बात कर रहे हैं। तो चलिए 4028085 है नंबर हमारा। हम यही मांग करेंगे कि जिस भी विषय को लेकर हम हमारा आप कार्यक्रम रख रहे हैं, आशा करते हैं कि आपके विचार भी उसी पर हो तो अच्छा है। तो चलिए यहाँ पर अगले श्रोता की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो नमस्कार। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार,
1: हेलो नमस्कार, मैं वसंती,
0: कैसी है वसंती
1: मैं
0: जी?
1: ठीक हूँ
0: अच्छा
1: जी।
0: चलिए
1: जो
0: अच्छा
1: शब्द
0: लगा
1: कहने जा रही हूँ,
0: जी जी बताइए
1: घरेलू नुस्खों का, आप नुस्खे बोलती बोलती हैं ना,
0: जी
1: जैसे खांसी है,
0: जी
1: ठंड लगती है, तो हम
0: जी
1: बुजुर्ग हैं ना, तो
0: जी
1: पहला चीज़ हमें टीका लगाना चाहिए, ये
0: जी
1: बहुत ज़रूरी है।
0: ओके
1: और गरम गरम चाय, सभी चीज़ गरम गरम,
0: जी
1: खाना भी गरम,
0: जी
1: कमली भी गरम, और
0: जी
1: आपका जो आपका वस्त्र है वो भी गरम, ठंडा पानी नहीं, छेद पानी, गरम पानी से इस्तेमाल करना। चाय
0: जी
1: चाय हो या कुछ भी हो,
0: जी
1: ठंड
0: जी
1: ठंड नहीं लेना चाहिए।
0: बिल्कुल नहीं।
1: पानी
0: हाँ
1: जी,
0: हाँ
1: पानी भी हो तो उसको बॉईल करके पीना
0: ओके
1: चाहिए।
0: जी,
1: तो ये सब छोटे छोटे नुस्खे से ना आपका
0: स्वास्थ्य अच्छा
1: जो
0: रहता है।
1: जी। और सुबह 7 बज के आधा घर ही पर रहना चाहिए, 7 बज के आधा हो जाएगा ना, तब आप आंगना में निकल के सब तनि सुन ठहले, तनि सुन घूम
0: हाँ
1: घूमे सब, आइए 7 बज के आधा नहीं जाए जाएगी।
0: क्योंकि
1: ये
0: सवेरे
1: प्लस
0: सवेरे ठंड काफी होती है ना, थोड़ी धूप निकल जाए तब जाना चाहिए।
1: जी,
0: जी चलिए
1: यही
0: बहुत
1: जो शब्द
0: धन्यवाद बसंती
1: जी
0: जी
1: जी जी
0: आपके विचारों के लिए। चलिए यहाँ पर एक और गीत के साथ कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। ऐसे आप सभी इतने प्यार से भाग ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं चलिए एक और फोन यहाँ पर आ रहा है, हम इनसे मिल लेते हैं, देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो नमस्कार। हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते
1: हेलो नमस्ते,
0: जी, कौन बोल रही है?
1: मैं इंदिरा मेबेक से
0: कैसी है इंदिरा जी?
1: ठीक हूँ। हाँ बहुत धन है, ये तो विषय बहुत ही अच्छा विषय के लिए है। मैं
0: धन्यवाद जी।
1: भोजपुरी में बोलूँगी,
0: हाँ
1: हमारे
0: हाँ
1: एगो
0: बोलिए बोलिए बिल्कुल।
1: हमारे माताजी पिताजी जब पहले ठंडा तो बहुत लड़का रहल, हमने बहुत लड़का रहल तो ठंडा लगता, देखब हमारे पिताजी पहले घर तोड़ के रहल तो उ रेसो डाल के हमारे माँ खिसाई, बोली काहे ऐसे रेसो जो नहीं तो गरम लड़का लोग के घर द्वार सब गरम, आजकल तो हीटर बा, पहले तो उड़ीसों में आग बना के सगरो रात के घर द्वार में सगरो गरम, और हर रोज रात के जैसे है साफों बा दूध बा हो डाल के, दूध बा साफों बा और हो बा छिपुआ सब डाल दे बा, और शाम्बुई हो के एगो इलायची एगो बुटकाने गरम हो के मजा अभियो ले आए सब लड़का लोग के, तनी तनी सुनाए ठंड के मौसम में दे दा पिए के, और सब लड़का के चाहना हम जानी ला हमार भाई एगो डॉक्टर है, वो बोलेला जब कपार गोर कपार और हाथ गरम रही तो सब अच्छा है,
0: बिल्कुल
1: ठंड के
0: सही
1: मौसम में
0: जी जी
1: पहला विषय है गोर
0: जी
1: कपार और हाथ, हाथ में जैसे ले गाँव गरम का ले गाँव, कपार में पोलो और गोर में सुसित कोलो, सब सब गरम में होना है तो सब अच्छा जाएगा,
0: बिल्कुल आपने सही कहा। मतलब अपने आप को गर्म रखना बहुत आवश्यक होता है गर्म
1: बहुत
0: कपड़ों
1: आवश्यक, ये
0: से,
1: बहुत आवश्यक है। आजकल
0: क्योंकि कभी
1: सभी
0: कभार होता है कि ठंड में हम अचानक देखो आंगन में चले जाते हैं, ठंड पकड़ लेता है, सर में दर्द हो जाता है, बदन में दर्द होता है, और खासकर

0: हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग है ऐसे ही उनके जोड़ों में दर्द होता है उम्र के कारण, बीमारी के कारण, और किसी भी उम्र के लोगों को जो है ये दर्द की शिकायत अभी तो हर एक को होती है। तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान अपना रखें बीमारी पकड़ने के पहले ही से, जब हम जो है सुरक्षा जो है मतलब के चीज़ों का ध्यान रखना शुरू करें तो बीमारियाँ कम लगती हैं।
1: मैं तो ऐसे ही रहती हूँ, जैसे वो खाने पीना की, जैसे सूसू भाजी है, दाल भात है, ये सब ठंडा ठंडा चीज मत खाना
0: जी,
1: सब गरम गरम, जैसे वो माता जी ने कहा सब गरम गरम, गरम में रहना, ठंडा नहीं जाना, जब धुरा धूप निकल गया तब जाओ धूप में, टबरे से भीतर हिल जाएंगे, सब काम धाम धूप में निकल कर करना, जैसे धूप आगे धूप के जाने के बाद घर में आ जाना, ऐसे करना हो
0: जी।
1: अच्छा, शुभ
0: संध्या। बहुत धन्यवाद इंदिरा जी आपके विचारों के लिए, आपको भी शुभ संध्या हम कहेंगे।
1: अच्छा,
0: और चलिए यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं कि इस बदलते मौसम में किस तरह का खान पान आप अपने जीवन में अपना रही है, किस तरह के छोटे छोटे बदलाव आप ला रहे हैं जिससे आप अपने आप को और भी स्वस्थ रख पा रहे हैं। और एक बार फिर हम मांग करेंगे कि जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं कि आपके विचार भी अगर उसी पर हो तो अच्छा हो। चलिए अगले श्रोता की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार।
2: हेलो
0: जी नमस्ते, आपका स्वागत है जी, कौन बोल रहे हैं?
2: नमस्ते नमस्ते, मैं जो अपना विचार दे रहा हूँ।
0: हाँ, अपना नाम तो बताइए, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं हूँ विष्णुदेव।
0: बताइए भाई जी।
2: हाँ, वैसे खांसी के लिए ये बॉम जी पेरू है ना, बॉम
0: हाँ?
2: जी पेरू
0: जी,
2: दो पत्ते
0: जी,
2: उसके साथ चाय
0: जी
2: और अदरक पूछ कर उसमें डालकर बॉईल होने दो
0: जी,
2: और उसको गरम गरम पियो,
0: ओके,
2: वो खांसी चला जाएगा
0: जी।
2: दूसरी बात है 10 पत्ते तुलसी, 8 जिपवाव चाय बनाइए गरम गरम रात्रि में, उसमें रैजाम भी डालिए,
0: ओके,
2: और इसको गरम गरम पीकर सो जाएं
0: जी,
2: खांसी चली जाएगी।
0: अच्छा,
2: फिर है आंवला है ना,
0: हाँ,
2: उसका जो लाखूत मिलता है, उसका लाखूत से काढ़े करके,
0: ओके,
2: उसको मिश्री और उसमें थोड़ा सा चाय के पत्ते भी डाल सकते हैं, उसको खूब बॉईल होने दो।
0: अच्छा,
2: और बॉईल होने के बाद उसको पास्ते करके उसको गरम गरम शाम को पी लो।
0: अच्छा,
2: सब केक हो जाएगा।
0: ओके जी।
2: और एक बोलता हूँ, जिमेल जिमेल ले लो और उसमें जीराजाम डालकर थोड़ा थोड़ा गुद गुद उसको पिए, वो जो खांसी है वो सब चला जाएगा।
0: अच्छा,
2: और ये लाघरीप हो तो 6 ग्राम जैजाम, 2 ग्राम जिपवाव गुड़ थोड़ा सा, और सब डालकर बॉईल होने दो।
0: अच्छा,
2: बॉईल होने के बाद उसको पास्ते करके थोड़ा थोड़ा पीते रहे, 3 दिन में सब खत्म हो जाएगा।
0: अच्छा,
2: ये खांसी की दवा।
0: बहुत धन्यवाद विष्णुदेव जी आपकी इन सभी।
2: बहुत है, बहुत आयुर्वेद है, लेकिन ये खांसी के लिए, तो खांसी के लिए मैं दे रहा हूँ।
0: अच्छा जी, बहुत धन्यवाद, आपको कहेंगे शुभ संध्या।
2: बहुत धन्यवाद, शुभ संध्या आपको
0: जी, नमस्कार। चलिए इसी के साथ हम एक और श्रोता की ओर बढ़ते हैं, लाइन यहाँ पर कट गई, कोई बात नहीं, आप दोबारा जो है कोशिश कीजिए। एक गीत के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और आप सभी इतने प्यार से भाग ले रहे हैं इसके लिए धन्यवाद।
3: हम और आप

0: हम और आप, हम और आप।
1: चलिए हम और आप इस प्रोग्राम में आपका प्यार भरा साथ हमें मिल रहा है। हम और आप ये जो प्रोग्राम है चलता है हर रविवार को सुबह के 4 से 5 बजे के बीच। कोई ना कोई एक ऐसा विषय लेकर आते हैं जहां पर आप अपने विचार हमारे साथ बांटते हैं, उस विषय पर बड़े ही प्यार से समय निकाल कर हमें फ़ोन करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। आज हमने आपसे जानना चाहा कि इस बदलते मौसम में किस तरह से आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, किस तरह से अपने परिवार को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए एक और श्रोता की ओर हम बढ़ेंगे। हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार सुमी जी।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
2: जी मैं देवी हूँ।
1: कैसी है देवी जी?
2: ठीक हूँ।
1: ओके।
2: हाँ, तो मैं बचपन में, मुझे याद है मेरी माँ मुझे वो जब खांसी होती थी ना, दूध में वो उबालटिन डालकर उसमें गोल्ड मिर्च के पाउडर भी डाल देती थी।
1: अच्छा,
2: तीखा होता है ना वो।
1: ओके।
2: तो मुझे पता नहीं चलता था, चुपके से डाल देती थी।
1: ओके।
2: तो पी लेती थी 2-3 बार। खांसी तो रात को भी ज्यादा होते हैं ना
1: जी,
2: तो माँ मुझे रोज रात को देती थी 3-4 दिन ऐसे, तब खांसी अपने आप चली गई। तब माँ ने मुझे बताया तुझने ऐसे ठीक है, अब तो नहीं होती है, थोड़ा कसरत भी करना
1: चाहिए। हाँ, बिल्कुल, ये आपने सही कहा।
2: ये अपने खांसी एकदम से नहीं जाएगी, थोड़ा थोड़ा होगा, तो उसको अपने काबू में कर लेना चाहिए, उसको थोड़ा दवा लेना चाहिए। जैसे मैं अभी नाश्ता करती हूँ ना, सुबह को जब नाश्ता करते हैं ना, लगता है मुझे खांसी होने वाली है, तो हमेशा मेरे पास सायरप भी होता है खांसी का, तो एक छोटा चम्मच ले लेती हूँ, फिर खांसी चली जाती है।
1: हाँ, बहुत जरूरी होता है छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। और कहीं ना कहीं पहले ऐसा होता था कि जब हम छोटे थे तो जो हमारे माँ बोले, चाची बोले, नानी बोले, जो छोटी छोटी चीजें हमें खाने पीने को देती थी, तो हम उसे पसंद नहीं करते थे, क्यों हमें खिला रहे। आज जब बड़े हो रहे तो उन चीजों की अहमियत हमें समझ में आती है ना।
2: बचपन में तो मुझे वो सुतकुनेल जाकर मुझे बहुत पसंद था।
1: ओके।
2: हम सब जब भाई बहन बैठे होते हैं ना भोजन के बाद, तो मैं कप में सबको प्लेट में कप में आकर सर्व करती थी।
1: ओके।
2: मेरा बड़ा भाई बहुत पसंद करता था ये, तो उसके बाद और हम सब पीते थे।
1: ओके।
2: जब तक भैया यहाँ पर थे, तो हम एक, अगर वो 1 महीना यहाँ रहेगा तो 1 महीने तक मैं सर्व करती थी।
1: ओके।
2: वो तो इंग्लैंड में थे।
1: जी जी जी।
2: हम वो दवा बना कर देते थे, हम सब पीते थे।
1: ओके ओके ओके, चलिए अच्छी बात है।
2: खत्म हो गया, नहीं कसरत करते हैं, बस इतना ही मुझे कहना है, और सावधानी बरतनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: लापरवाह, गरम गरम कपड़े पहनना चाहिए। अब तो मैं ब्लैक कॉफी पसंद करती हूँ।
1: ओके। ऐसे भी कहते हैं कि ब्लैक कॉफी सेहत के लिए अच्छी होती है। है ना?
2: ऐसे मैं कॉफी नहीं पसंद करती हूँ।
1: ओके।
2: केवल विंटर में ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी पीती हूँ, शाम को रात को भोजन करने के बाद अच्छा लगता है।
1: तो चलिए, हमें भी आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। शुभ संध्या आपको भी। चलिए देवी जी, यहाँ पर कोई है जो हमें बार बार व्हाट्सएप पर फोन कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो व्हाट्सएप का नंबर है 5251705500, इस नंबर पर आप सिर्फ हमें मैसेज भेजिए। व्हाट्सएप का जो फ़ोन है हम उसे रिसीव नहीं करते हैं, वो सिर्फ आपके मैसेजेस के लिए है। अगर आप प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं तो आप 4028085 पर हमें कॉल करें, ताकि हम अपने आपके कॉल को ऑन एयर ले पाएंगे। व्हाट्सएप पर आप कॉल करेंगे तो हम तो आपसे बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय हम ऑन एयर हैं। ठीक है, चलिए, जितने भी लोगों ने इस प्रोग्राम में भाग लिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घरेलू नुस्खों पर था, स्वास्थ्य पर था, बड़े ही प्यार से आप सभी का प्यार भरा साथ हमें मिला, इसके लिए धन्यवाद। और जो है ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहिए। चलिए, एक खूबसूरत गाने के साथ इस हमारा प्रोग्राम को हम समाप्त करते हैं, और 5 बजे से तो हरपसेन इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो चलिए, आपने जो है अपना सहयोग दिया, अपने अनुभव को बांटा, अपने विचारों को बांटा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम और आप, यानी कि हम और आप मिलके ही जो है ये कार्यक्रम पूरा होता है, और हमेशा की तरह आज भी आपने अपना इतना साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद। बाद आशा करते हैं जो रविवार का दिन है बहुत अच्छे से बीत रहा होगा आप सभी के लिए। और रेडियो मॉरिशस पर हमारी तो कोशिश होती ही है कि आप सबका साथ दे, अच्छे अच्छे कार्यक्रम आपके लिए चलाए, अच्छे अच्छे गाने हम आपके लिए चलाए। और चलिए इसी के साथ एक खूबसूरत गाने के साथ जो है आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं, और इस गाने के तुरंत बाद जो है हम शुरुआत करेंगे तो हर पसीन इस प्रोग्राम की। धन्यवाद।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: रविवार 5 जुलाई घड़ी मिला लीजिए सांझ के 5 बजे था। रेडियो मॉरिशस पर एक बार फिर से आप सबको के स्वागत बात है और यहाँ से तो हर पसीने कार्यक्रम शुरू हुआ था और जहाँ कहीं से भी हमने के संगीत जुड़ल आवा जा आप सबको के धन्यवाद हमने बोलब जा और चले जा तो हर पसीने कार्यक्रम जैसे कि जानत हवा जा फरमाइशी गीत के प्रोग्राम है सग बजाए कार्यक्रम में हमने के टेलीफोन करे सग बजा अपन पसंदीदा भोजपुरी गीत के फरमाइश करे तो कोई भोजपुरी गीत सुने के चाहत वजह कोई के नाम कोई गीत चाहत वजह करे तो सक बजा हमने के संगे जुड़े और भाग ले 4028085 पर तो सक बजा मैसेज करे 5251700005 पर।
2: सलाम

चले जाए यहाँ पर ही। तो और पसंदी कार्यक्रम में भोजपुरी गीत, आप सबको के पसंदीदा गीत यहाँ पर ही चला था। और ये बड़ा चामने अगला गीत की और सोना नयन जी के गावल गीत है घर दामाद। और ये गीत के फरमाइश आल बातें नोत्रदाम से रिहाना जी की ओर से। रिहाना जी गीत मंगले हवन अपन दू सहेली खातिर, माला फावदार और सुरेखा खातिर, और जितना श्रोता सोना नयन जी के गावल गीत सुने के खुशी रहलन ये गीत उनका रोर से सबको खातिर।

करते चले जाए यहाँ पर ही तोहर पसीने कार्यक्रम में आप सबको के साथ हमने के मिला था और बड़ा जी हमने अगला गीत की ओर अगला जन गीत है छोटा से बड़ा आदमी बनिए। ये गीत विनोद सिवदा जी के गावल गीत है। ये गीत के फरमाइश आल बात है थ्रियोले से अनीता जी की ओर से। अनीता जी गीत मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर, खासकर अपन बेटी अंजू, दामाद वेद, बेटा सचिन, बहू पूजा, नाती पोता हवन कियांश, सिया और थ्रियोले के इनकर सब परिवार खातिर। दशक बजाई कार्यक्रम में भाग ले 4028085 नंबर हमने के सक बजा अपन पसंदीदा भोजपुरी गीत के फरमाइश करे।

चले जाते और पसीनी प्रोग्राम देखते देखते सांझ के 5:20 यहाँ पर ही होता है। रविवार के दिन है, आज हम 5 जुलाई और ये पड़प जी हमने अगला गीत किया और अगला जो गीत है ये गीत खासकर फरमाइश आलबाते घ्रांगप से सुनीता जी की ओर से राधा के शोभेला कृष्ण उखज जी के गावल गीत है। और ये गीत के मांगू कर ले हवन अपन बहन खातिर विमला और अमृता खातिर जिनकरा भोजपुरी गीत सुने के बड़ी अच्छा लगेला, तो ये गीत खास कर विमला जी और अमृता जी आपके खातिर सुनीता जी की ओर से।

स्वागत है यहाँ पर अब तौर पर से नए कार्यक्रम के साथ। यहाँ पर माया जी मोताई ब्लॉन्स से हमने के संगे जुड़ल हवन और यहाँ पर गीत खासकर माया जी तोहर खातिर हमने करब जा, बहुत बहुत धन्यवाद। और बखत इंदिरा लवटन जी हमने के संगे जुड़ल हवन। इंदिरा जी गीत खास कर आपके खातिर भी हमने आपके मैसेज यहाँ पर हमने के मिलल बातें, लेकिन मैसेज में कौन गीत मंगले हवन हम नहीं सकत है समझे, तो ये गीत जो हमने चलावत है जा ये खासकर आपके खातिर, आशा करत है जा ये गीत आपके पसंद आई।

बढ़ते चले जाएं यहाँ पर ही तो हर पसंदी प्रोग्राम रेडियो मॉरिशस पर ये कार्यक्रम में हमने के संगे जुड़ल हवा जाए धन्यवाद। और बड़ा अच्छा हमने अगला फरमाइश की ओर अगला जो गीत है सोना नयन जी के गावल गीत है और ये गीत खास कर सोनन चितांगी जी आपके खातिर ये गीत खास कर माला जी खातिर पूनम है नीलम है सोनम है शबनम है पूरा चितांगी परिवार जो ने बखात हमने के संगे जुड़ल हवा नहीं कार्यक्रम से।

जी हाँ, सिगरेट शराब इस सब चीज़ से चाहेला हमेशा दूर रहे के कहे के इसे सेहत के तो नुकसान पहुँचेला ही, साथ ही हमने के जो ना पैसा के भी नुकसान होवेला और चाहेला हमेशा स्वस्थ जीवन शैली अपनाए के। चर्चा देखते देखते यहाँ पर सांझ के 6:15 बज गल बातें बड़प जम ने अगला गीत की ओर। विक्रम कोलाचंद जी के गावल गीत है धोती पोथी पगड़ी। ये गीत कमला जी मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर और खासकर उनकर सब सहेली खातिर।

6 बजे यहाँ पर ही चले जा श्रोता लोग बड़ब जा हमने अंतिम गीत की ओर त्योहार पसीनी कार्यक्रम में जन अंतिम गीत है आप सबको ही खातिर हमने करब जा और यही गीत के साथ जन है त्योहार पसीनी कार्यक्रम समाप्त हो जाए। त्योहार पसीनी कार्यक्रम जन है चलेला हर रविवार के सांझ के 5 से 6 बजे के बीच और ये अंतिम गीत के साथ आज के हमने के कार्यक्रम समाप्त हो जाए और फिनों से आप सबको इसे भेंट जल्दी हुई हमने के और 6 बजे जन है सगबजा सुने पूरा समाचार MBC रेडियो पर। तो चले जा हमने के आज्ञा दा नमस्कार आप सबको के शुभ संध्या हमने की ओर से और आशा करत है जा के ऐसे ही रेडियो मॉरिशस पर हमने के जो है आप सबको के साथ मिलते रही।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए, शाम के 6 बजे हैं।

0: सभी को नमस्कार। शाम 6 बजे के समाचार बुलेटिन में स्वागत आप सभी का। सबसे पहले आज की सुर्खियां। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार जुलाई से सितंबर के बीच एल नीनो के तेजी से मजबूत होने की संभावना। इससे दुनिया के कई हिस्सों में गर्म की लू और सूखे तथा भारी बारिश जैसी चरम मौसम घटनाओं का खतरा। मॉरिशस में औसत पैदावार के विस्तार के तहत 11 समुद्री स्थलों के लिए जल्द टेंडर्स जारी किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य ब्लू इकोनॉमी में निवेश बढ़ाना है। सितंबर में पोर्ट लुई थिएटर 6 वर्षों के नवीनीकरण के बाद फिर से दर्शकों के लिए खुलेगा। लगभग 475 मिलियन रुपए लागत तक के कार्य किए गए। विश्व कप में अब राउंड ऑफ 16 का रोमांच शुरू हो गया है। हर मुकाबला निर्णायक बन चुका है। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। अब समाचार विस्तार से। 2300 परिवार सोशल रजिस्टर में पंजीकृत होने जा रहे हैं और उन्हें नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन से मदद मिल पाएगी। 1 जुलाई से योग्यता की सीमा कम कर दी गई है। ये बजट 2026-2027 में शामिल कदम है, जिसका मकसद है ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करना। वर्तमान में सोशल रजिस्टर में करीब 5200 परिवार दर्ज हैं। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: केविन 48 साल के हैं और 8 बच्चों के पिता हैं। स्थायी नौकरी मिलने से पहले वे सोशल रजिस्टर में पंजीकृत थे और NEF की सहायता का लाभ प्राप्त कर रहे थे। वे कहते हैं 5000 रुपए का पेंशन मिलता था। बच्चों को स्कूल के सभी सामान मिलते थे, यूनिफॉर्म, बैग्स, जूते आदि। हाल में NEF से मदद मिली। फिलहाल कागितास लगभग 5000 परिवारों की सहायता कर रहा है, लेकिन इनमें से बहुत कम परिवार सोशल रजिस्टर ऑफ मॉरिशस SRM के लिए योग्य हैं। कागितास की महासचिव पैट्रिसिया अदेल फेलिसिते कहती हैं,
2: Bien souvent, ça bande zimunla, je décote parce qu'il bande critère d'éligibilité.
1: कई लोगों को मदद नहीं मिलती क्योंकि इसके योग्य बनने के लिए मापदंड बहुत सख्त हैं। जैसे अगर कोई अविवाहित माता अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रही है तो वो SRM में शामिल नहीं हो सकती। कागितास में रात बिताने के शेल्टर हैं, बेघर लोगों का स्वागत करते हैं, वे भी SRM में शामिल नहीं हो सकते। बजट में की गई घोषणा के अनुसार 1 जुलाई 2026 से सोशल रजिस्टर में पंजीकरण के लिए योग्य बनने की नई एलिजिबिलिटी थ्रेशहोल्ड बढ़ा दी गई है। जूनियर समाज सुरक्षा मंत्री कुगान पागापेन कहते हैं, बजट से पहले SRM के मापदंडों पर बहुत विचार विमर्श किया गया, जिन पर करीब 3 वर्षों से ध्यान नहीं दिया गया था। एक वयस्क के लिए 3575 से 4000 रुपए हो गया है और अगले साल 1 जुलाई से ये 4250 हो जाएगा। इस कदम से अधिक परिवार सामाजिक सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य बन सकेंगे। फिलहाल करीब 5200 परिवार SRM के योग्य हैं। मापदंडों पर फिर से गौर करने पर ये संख्या करीब 7500 तक पहुंच जाएगी। 2300 परिवार SRM की सेवाओं से लाभ उठा सकेंगे। नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन का भी सहयोग मिलेगा। फिलहाल हर महीने सरकार 25 मिलियन रुपए खर्च करती है इन परिवारों की मदद के लिए। नए मापदंडों से ये रकम दुगनी हो जाएगी। बजट में विकलांग लोगों के लिए दिए जाने वाले अलाउंस की समीक्षा की भी घोषणा की गई है। इस उद्देश्य के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा।
0: मॉरिशस में ऑयस्टर की पैदावार बढ़ रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड और कृषि उद्योग मंत्रालय की ओर से 11 समुद्री क्षेत्रों में ऑयस्टर पालन के लिए टेंडर की प्रक्रिया जारी की जाएगी, जिससे ब्लू इकोनॉमी के निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा। मकसद है स्थानीय पैदावार को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: पुतोदो के इस जल क्षेत्र में खेमराज पैसान पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से ऑयस्टर की पैदावार कर रहे हैं। वे उन दो ऑयस्टर उत्पादकों में से एक हैं जिन्होंने

0: ने अपनी गतिविधियों के लिए अधिकारियों से एक बगाशा किराए पर लिया है। वे कहते हैं, मैं करीब 1 मिलियन ऑयस्टर की पैदावार करता हूं, जो गर्मी में बड़े होते हैं। हम जाल बनाकर समुद्र में हर जगह रखते हैं। 3 महीने बाद ये ऑयस्टर आकार लेने लगते हैं। तब ज्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि वे ज्यादा नाजुक होते हैं। खेमराज अपने ऑयस्टरों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मॉरिशस स्टैंडर्ड ब्यूरो के साथ मिलकर काम करते हैं। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं। हर रोज उन्हें साफ करते हैं। जितनी पैदावार मैं करता हूं वो काफी नहीं है। भविष्य में सरकार की फिर से मदद लेंगे। सिर्फ बगाशा में पैदावार नहीं की जाती है, गहरे समुद्र में भी होती है, जिससे ज्यादा लाभ होता है। उन्हें ज्यादा खाद्य पदार्थ मिल जाते हैं। और इसके अलावा इस बगाशा का उपयोग कैंकरों, खासकर प्रसिद्ध गौले प्रजाति के पालन और क्लैम की सीमित स्तर पर पैदावार के लिए भी किया जाता है। कृषि उद्योग मंत्रालय के संचालन में आने वाले 9 बगाशा में से फिलहाल केवल 2 ही कार्यरत हैं। इस क्षेत्र को गति देने के लिए कई नए उपायों पर काम किया जा रहा है। कृषि उद्योग, खाद्य सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी एवं मत्स्य मंत्रालय के कार्यवाहक सहायक निदेशक मनोज फाकू कहते हैं, EDB एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पर काम कर रहा है ताकि ऑयस्टर की पैदावार में रुचि रखने वाले लोगों की मदद कर सके। 11 जगहों की पहचान की गई है। सभी परियोजनाओं को EIA से गुजरना पड़ेगा और सभी स्टेक होल्डरों के साथ परामर्श करना होगा। प्रोत्साहन देने वाले इन उपायों के माध्यम से सरकार का लक्ष्य स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना है और नए रोजगार के अवसर पैदा करना है। साथ ही ब्लू इकोनॉमी के योगदान को बढ़ाकर GDP के 20% तक पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा गया है।
1: आर्य समाज, हिपा के आर्य समाज के सदस्य कल एक साथ जुटे। वहाँ पर एक नए मंदिर के उद्घाटन के लिए विशेष पूजा की गई। साथ में वैदिक विधि विधान पूरे किए गए और सभी भक्तों को एक साथ जुटने का मौका इस पर मिला। ज़रा विस्तार इस रिपोर्ट में।
0: वैदिक मंत्रों और प्रार्थनाओं के पाठ के बीच हिपाई समुदाय के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ। इलाके के दूसरे आर्य समाज मंदिर का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इसके अध्यक्ष उदय कुमार गोरा कहते हैं, हिपाई आर्य समाज उतना सक्रिय नहीं था। करीब 9-10 साल पहले हमने इसे फिर से सक्रिय किया। हमारे पास अब एक छोटा मंदिर है जहां नौजवानों के बीच आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार किया जा सकता है। आध्यात्मिकता और श्रद्धा से भरे वातावरण में ये पूजा स्थल प्रार्थना, वैदिक मूल्यों के प्रसार और समुदाय को एकजुट करने के लिए समर्पित स्थान के रूप में स्थापित किया गया है। हिपाई आर्य समाज के सचिव अमीचंद करीमन कहते हैं,
2: यहाँ पर यज, महायज, बहुत से ऐसे गतिविधियाँ करेंगे जो कि सभी वर्ग के लोग के इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे कि उनको ट्रेनिंग देना धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, समाज के बारे में अवगत करना, इन सब बातों के लिए हमने इस आर्य मंदिर का निर्माण किया। और आज काफ़ी सालों के संघर्ष के बाद हम लोगों ने इस मंदिर को खड़ा किया और हमारे लिए आज गर्व की बात है कि हम लोगों ने इस मंदिर का निर्माण कार्य समाप्त कर दिया।
0: पवित्र अनुष्ठानों से सजिए प्रतीकात्मक समारोह श्रद्धालुओं के अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रति गहरे लगाव को दर्शाता है।
1: पहली बार के लिए मॉरिशस में मक्काल मुकर्रमा सोसाइटी और MBC के सहयोग से कुरान की तिलावत की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कंपटीशन जुलाई महीने के अंत में शुरू होगी। MBC में आज जुड़े सदस्यों के साथ इसकी तैयारी के लिए सब इकट्ठा हुए।
3: प्राप्त 100 से ज्यादा एप्लीकेशंस में से 13 से 17 साल के 36 नौजवानों को 2026 कुरान खानी मुकाबले के 4 प्रिलिमिनरी राउंड्स में हिस्सा लेने के लिए चुना गया है। मुकाबला शुरू होने से पहले MBC में एक इंटरैक्टिव सत्र लगाया गया ताकि प्रतिभागी कंपटीशन की शर्तें बेहतर समझ पाएं और अपनी तजवीद बेहतर करने पर काम कर सकें।

0: जूरी की सदस्य शेख मोहम्मद सलमान बलाकी कहते हैं,
1: जो फासों प्रोनोंसे इसकी जो पहली जो बन लेत जो पहली जो बन मो pareil comme ça fin descend l'on rasoul sallallahu alayhi wa sallam iski ena en flow ena en continuité dans ce qu'ils ont pelia et les bizalo ansel pays lo ansel niveau
0: Quran pak ki ayate padhne ka ek

0: करना लाजमी होता है। कारी मंसूर कहते हैं,
1: कुरान ए नाशो प्लस से की वापिल इब्तिदा ए वे नाशो प्लस को तो वो विज़ा के वक्त पके इन्वा कोमांसे ने बहुत कुछ सा ए वारिते ने बहुत कुछ सा।
0: प्रतिभागियों को कुछ सलाह दिए गए जो वे अब अपनी तजवीद बेहतर करने के लिए अमल में ला सकेंगे। मॉरिशस में पहली बार हो रहे इस मुकाबले का मकसद है कुरान पाक की तिलावत को फरोख देना। मक्का अल मुकर्रमा सोसाइटी के प्रेसिडेंट अनस अशरफी कहते
2: हैं,
0: MBC उर्दू डेस्क के जिम्मेदार अनवर दस मोहम्मद कहते हैं,
3: हम सोच रहे हैं कि आइंदा 13 से 17 के बजाय हम इसको ज़्यादा फैलाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा ले सकें। और मैं सबसे पहले मुबारकबाद के हकदार हैं वो वालिदैन, वो असातिज़ा, वो उस्ताद और वो तमाम वो कैंडिडेट्स, वो तमाम बच्चे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। और मैं ये भी बताना मुनासिब समझता हूँ कि जो इनामात रखे गए हैं वो भी बहुत दिलचस्प हैं। पहला इनाम एक उम्रा टिकट के लिए फुल पैकेज बोर्डिंग एंड लॉजिंग के साथ, और दूसरा इनाम एक उम्रा टिकट, और तीसरा इनाम 25,000 नकद यानी कि कैश प्राइस। और यही नहीं बल्कि तमाम जितने भी फाइनलिस्ट होंगे उनके लिए भी अलग अलग जो है तहाइफ रखे गए हैं।
0: 4 प्रीलिमिनरी राउंड्स 26 जुलाई, 2 अगस्त, 9 अगस्त और 16 अगस्त को लगेंगे। इनका प्रसारण हर शुक्रवार को MBC चैनलों पर किया जाएगा। चौथे राउंड के बाद फाइनलिस्टों की घोषणा की जाएगी। मुकाबले का फाइनल सितंबर में लगेगा।
4: विश्व कप की बात करते हैं। वर्ल्ड कप 2026 के लिए राउंड ऑफ 16 का दौर शुरू हो चुका है। कल मोरक्को की टीम की भारी जीत हुई। कनाडा को उसने 3-0 से हराया, जबकि आज फ्रांस और पैराग्वे के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
5: मेजबान टीम कनाडा का वर्ल्ड कप का सफर पूरा हुआ। मोरक्को ने कनाडा को रोका। मैच की शुरुआत में कनाडा हावी था मोरक्को पर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा मोरक्को अपना अनुभव दिखाने लगा। सेकंड हाफ की शुरुआत में ही हकीमी के फ्री किक पर उनाही का गोल। इस पहले मौके पर पहला गोल मोरक्को ने कनाडा को चौंकाया। इसके बाद जैसे मार्च की टीम राह भटक गई, ऐसे में और एक गोल बनता है, फिर से उनाही का गोल। यहां से कनाडा कुछ खास नहीं कर पाया। ब्राहिम जाज के पास पर एक गोल बनाइए, 2 शॉट 2 गोल मोरक्को के लिए। 2 गोल काफी नहीं रहे। अंत में रहीमी कनाडा पर कोई रहम नहीं दिखाता। काउंटर अटैक पर इंजरी टाइम में मैच का तीसरा गोल, कनाडा 0 मोरक्को 3। अब क्वार्टर फाइनल में मोरक्को का सामना फ्रांस से होगा।
4: विदेश समाचारों में अमेरिका के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। आज से 250 साल पहले अमेरिका को उसकी पहचान मिली। एक ऐसे देश ने जन्म लिया जो आज की भी पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। इस खास मौके पर आज वहां आतिशबाजियां हुई, कई नई परियोजनाएं शुरू की गईं और कई उद्घाटन हुए। आज रैली के बाद अमरीकी राष्ट्रपति ने भारी भीड़ के समक्ष अपना संबोधन दिया और उन्होंने कहा कि अमेरिका का सपना वापस आया है। जानते हैं मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम से आ रहे सक्रिय बादल कल स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह आसमान साफ रहेगा, दोपहर बाद दक्षिणी इलाकों और ऊंचाइयों पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। हवा दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 14 से 17, अधिकतम 19 से 22, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अतिरिक्त जानकारी इस प्रकार है। मस्करीन्स के दक्षिण पश्चिम से एक काफ़ी जोरदार एंटीसाइक्लोन हमारे इलाके के करीब आ रहा है, जिस वजह से इलाके में मंगलवार से ठंडी और तेज़ हवाएं बहने लगेंगी और मंगलवार से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का भी पूर्वानुमान लगाया जा रहा है।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग और तकनीकी पर लुडोविक का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

शोक समाचार सुनिए। फिलाओ लेन ग्रांड पॉइंट पीमा में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चंद्रावती शंकर, श्रीमती चंद्रावती शंकर पैदाश नाम राम लगन और जो प्रभावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है और थी। कल दिन के 1 बजे उनके बेटे विनोद शंकर के मकान फिलाओ लेन ग्रांड पॉइंट पीमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट बीच की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 8:01 PM। इंदिरा गांधी रोड पे चिराफे में 45 साल के 45 ईयर्स ओल्ड के श्री शिव कुमार बनिया जो अश्विन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है और थी। कल दोपहर 2 बजे उनके मकान इंदिरा गांधी रोड पे चिराफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोमास्कल पे चिराफे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 8:02 PM। स्कूल लेन पेटी जूली में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के श्री ईश्वरलाल जगेसर जो पिंगो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनकी पत्नी अनीता जगेसर के मकान स्कूल लेन पेटी जूली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचुया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 8:11 AM। ब्रांच रोड मॉड ऑस्ट्रेलिया में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री जनाब अख्तर हुसैन सुभाची जो हरश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज रात 9 बजे उनके मकान ब्रांच रोड मॉड ऑस्ट्रेलिया से उठाकर दफनाने के लिए अमोगी का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट 9:00 PM। सिमेट्री लेन प्लेनमायो में 36 साल के 36 ईयर्स ओल्ड के श्री वितेश बुधन जो निश्ले के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल शाम 4:30 बजे उनकी माँ संध्या राबूजी के मकान शिमे सिमचिया प्लान मायों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 8:04 PM। कालीमाई रोड रिविया जुहापा में 19 साल के 19 ईयर्स ओल्ड के श्री आजागेन रंगासोमी जो अविसेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: सीबी की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति सुनिए। सीबी सुरीनाम गांव और मौसलमा गुबिन सुरीनाम के ग्राहकों को सूचित करता है कि आगामी बुधवार 8 जुलाई 2026 के सुबह के 9 से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। बुधवार 8 जुलाई 2026 के प्रातःकाल के 9 से लेकर शाम के 4 बजे तक सीबी ग्राहकों को सूचित करती हैं कि मरम्मत कार्य के समाप्त होते ही बिना कोई पूर्व सूचना बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। सीबी इस असुविधा के लिए ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थित हैं। ये थी एक व्यक्ति सीबी की ओर से।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

周日的早晨总是比平日多了一份从容，放慢脚步，泡一杯热茶，打开窗户，让阳光轻轻洒进来。

场景，明明话那么含蓄。

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
2: समस्त श्रोताओं को हमारा सादर प्रणाम। भजले प्रभु का नाम इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिवादन करते हैं। श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो चलिए, भक्ति की धारा बहने जा रही है आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह हम भगवान गणेश जी का

श्रोताओं, भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। वैसे ईश्वर को शब्दों से नहीं, भावों से पाया जाता है। जब मन निष्कपट होकर प्रभु के चरणों में झुकता है, तभी समर्पण का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। तो आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

श्रोताओं, भक्ति वह शक्ति है जो मन को बेचैनियों से निकालकर ईश्वर के विश्वास में स्थिर कर देती है। जहाँ भक्ति है वहाँ सुकून स्वयं रास्ता खोज लेता है।

श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं चैनल प्यारे प्यारे भक्ति गान आपकी सेवा में, आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। जब हम समर्पण की बात कर रहे हैं तो समर्पण का अर्थ अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागना नहीं, बल्कि हर जिम्मेदारी को ईश्वर का प्रसाद मानकर पूरे मन से निभाना है।

श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम है भजले का नाम। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जब हम समर्पण के बारे में बात कर रहे हैं श्रोताओ, तो समर्पण का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही मार्ग आत्मा को भीतर से मजबूत, शांत और प्रकाशमय जरूर बनाता है। तो आइए कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे।

श्रोताओ, हम कार्यक्रम के अंत तक आप पहुंचे हैं। वैसे जाने से पहले हम आपको यही कहेंगे, जब मन कहे प्रभु आपकी इच्छा सर्वोपरि है, तभी समर्पण का फूल खिलता है। तो चलिए, इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। हमारे तकनीकी सहायक यूसुफ को धन्यवाद देंगे। आप सभी को शुभ रात्रि।

मोहतरम सामीन, झूठ से मुतालिक यह हदीस समाअत कीजिए। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सच बोलना नेकी है और नेकी जन्नत में ले जाती है, और झूठ बोलना फिस्क व फुजूर है और फिस्क व फुजूर दोज़ख में ले जाता है। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से फरिश्ता एक मील दूर हट जाता है।

हज़रत सफ़वान बिन सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, क्या मोमिन बुज़दिल होता है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हाँ हो सकता है। फिर अर्ज़ किया गया, क्या मोमिन बख़ील हो सकता है? फ़रमाया, हाँ हो सकता है। फिर पूछा गया, क्या मोमिन कज़्ज़ाब यानी झूठा होता है? फ़रमाया, नहीं। हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया।

कि वो शख्स झूठा नहीं है जो लोगों के दरमियान सुलह पैदा करता है, अच्छी बात कहता है और अच्छी बात पहुंचाता है। सामिने कराम, महफिल शब प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंच रहा है। खुदा से दुआ है कि वो हमें आज की हदीसों पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम आमीन। आइए प्रोग्राम के आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं। इसी के साथ महफिल शब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अगली मुलाकात तक समीर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

रात के 9:02 हो गए बा सभी प्यारे श्रोतागण के हमार प्यारा नमस्कार स्वीकार कर जा। आज हर रविवार के दिन और रात्रि में ता ठंडा गिरता तोहर खातिर भोजपुरी तड़का मन कर ले कोनो बढ़िया गाना सुने के त अवश्य नंबर वा मिला ल और झट से मांग कर जा। उषा तोहर संगे रात के 11 बजे ले नंबर वा घुमा ल 402-402-5 और आज का पहल का गीत सुना किशोर किमिया के गावल गीत।

0: भोजपुरी तड़का।
1: श्रोता लोग, हमनी के देश में अनेकों भाषा बाते और हमनी के मौका मिलेला ढेर भाषा सीखे के। यही खातिर मॉरिशस के बोलल जाला हिंद महासागर के तारा, दुनिया के एगो छोटा स्वर्ग जहाँ पर एकता बाती। तो चला अगला गीत सुना जा, नीरज गुप्त मधु के गावल गीत और गाना सुनीता जी खातिर जो हमने के सुनाता क्यूपिप से गाना मांगा तो बन जा अपन खातिर और अपन परिवार खातिर।

0: 9:26 शोटाल और गीतवन त बेशक सुंदर चलाता, तोहर पसंद के गीतवन के चलाए किता हमके बहुत संतोष मिलता। सब प्रकार के गाना भोजपुरी में है जा बजेला, तोहरा धन्यवाद दे के खूबे मन करता। चला नीरज गुप्त मधु के गावल गीत सुना जा, और गाना
1: आयो के मां
0: किरण जी खातिर जोन रहिला काठोबोन, और बखत हमने के सुनता।

अरे गुनी बुलाने से क्या होगा, जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा, अरे गंदे पानी पीकर

अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब घर की आटा

साथी लोगन आशा करत हैं कि तो लोग वर्ल्ड कप के मैच देखत हो जा आजकल तो यही के चर्चा होता। अगर तुहरा फेवरेट टीम अभी तक खेलता तो तुहरा बहुत बधाई बधाई हो, और कभी कभी मौका मिली तो लोग भी तनी फुटबॉल खेल लिया। तो चल रात के 9:40 हो गल बा और ये गाना उन सभी लोगों खातिर जो न भी फुटबॉल मैच देखा था वंजा, और गणपत सत्यम ईसन के गावल गीत खास कर रविन जी के लिए जो रहते हैं जोन रहिला मेबर्ग। तो चला ई गाना छोटे मोर तुहर नाम

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:50 हो गल बा और यहाँ पर ही माहिन जी जो हमने के सुनाता ये बखत और गाना मांगा था वंजा बगल गौरी के गावल गीत और मामा पापा और अगुआ तो चला तो साथी लोग आशा करत है कि ये कार्यक्रम तोरो पसंद आवा था और कल एगो नया सप्ताह शुरू हो जाए एकर खातिर तोहरा बहुत साहस के जरूरत पड़ी अपन कर्तव्य निभाइय और अपन पर विश्वास रखिया विश्वास सचमुच चमत्कार कर देवेला।

0: भोजपुरी तड़का
1: रविवार के रात बा और ताली तू भी मारो हो। चलो अगला गीत सुदेवी जी खातिर जो हमने के सुनता वाकवा से और ये प्रोग्राम हुआ खूब एंजॉय करा तवन जा और अगला गीत मांगा तवन जा दीदी ललिता कुशल परिवार खातिर आत्माराम भैया दीदी सुनीता शोभा दिवीना मालेंगा के सभी रामरतन परिवार खातिर और कृषि के गावल गीत बरकी मसाला पीसेला और मंजली फराता बेलेला। तो चला ये गाना सुना जा कृषि के गावल गीत।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10:15 बजकल बा श्रोता लोग खुश पाए के पीछे लोग कभी पूरा जीवन बिता देवेलन। जितना तो हर पास बातें उनकर से आप संतोष न करेला, बड़ा खुशी के इंतजार करेला, पर छोटा छोटा चीज में खुश रहे के सीखला बाद में काम आए। तो चला अगला गीत कुनाल बाबूलाल के गावल गीत और गाना खासकर देवानंद जी जो हमने के सुनत आई बखत रोजिल से और गाना मांगा तवंजा अपन पत्नी सुरेखा खातिर और बीती आशनी खातिर।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: साथे लोगन हमेशा बोलीला कि तनाव बहुत खतरनाक है। तनाव से तोहरे नहीं बुझाए कब कैसन बीमारी धर लेलक। तनाव के दूर भगावा संगीत और खेलकूद में रुचि बढ़ावा जीवन में खुशी के रंग भर जाए।
3: हंगामा
2: करीला सा रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के लहरों पर रोशन सरासिन के गावल गीत और गाना जितना कोई के इबखत काम करत हवन जाए कर खातिर और खास कर रोई जी खातिर जो न रहिला मोताबा और इबखत हमनी के सुनता ये गाना एकर खातिर और एकर परिवार खातिर।

up in the yard. Son wall, basa tu ase kamperal bahar. Kaito kit.

रात के 10:51 हो गल बा। कितना जल्दी तोहर भोजपुरी तर का प्रोग्राम समाप्त हो गल। इतना घरे के साथ निभैला एकर खातिर हृदय से धन्यवाद बा। अभी तक 11 बजे के बारो हम के तोहर सेवा में फिर से प्रस्तुत हो। सर्दी के मौसम में कठिनाई होला उतने ही पर तोह लोग के प्यार से हमनी के बहुत उत्साह मिलेला। तविदा लय के समय आ गल बा। नमस्ते और शुभ रात्रि।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: हर सुर में प्यार, हर बोल में एहसास, पुरानी बॉलीवुड गीतों का ये अनमोल सफर आपके लिए लेकर आए हैं हम, जिसका नाम है सुनहरे पल, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। स्वागत है आप सभी का म्यूजिक लवर्स इस खूबसूरत से सुनहरे पल में, जहां पे आपकी यादों का खजाना खुलने वाले हैं। तो बस तैयार हो जाइए इस खूबसूरत सी सफर में, हमारा हम सफर बनने के लिए।

यादों की किताब के कुछ खूबसूरत पन्ने आज फिर खुलने वाले हैं। बिल्कुल जी, रेडियो मॉरिशस पर साथ बनिए रहे। संगीत का वो दौर जहां गीत दिल से लिखे और दिल से गाए जाते थे, चलिए उसी दौर में चलते हैं वापस सुनहरे पल के साथ।

ये लगता है कि यहाँ

दोस्तों, हमेशा याद रखना कि हर गीत एक ऐसा रिश्ता बनाता है और हर याद को जिंदा रखता है। आज उन्हीं यादों को फिर से महसूस करते हैं। रेडियो मॉरिशस सर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए पुरानी फिल्मों के अनमोल गीतों की सौगात। स्वागत है आपका सुनहरे पल में। जी हाँ दोस्तों, आराम से बैठ जाइए और इन खूबसूरत गानों का आप आनंद ले लीजिए।

वक्त बदलता है लेकिन कुछ गीत हमेशा जवान रहती हैं दोस्तों। इसमें तो कोई शक नहीं है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकती है, लेकिन वक्त बदल जाता है, लेकिन कुछ गीत हमेशा जवान रहते हैं। और आज उन्हें गीतों के साथ गुजारेंगे कुछ खूबसूरत सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर, और वो भी किनिशा का साथ। जी हाँ, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। और ये अगला नगमा खासकर आपके नाम।

0: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: पुराने गीत, पुराने यादें, What a beautiful combination। लेकिन फिर भी हमेशा हम आपको याद दिलाते हैं कि जब ऐसे गीत हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए सुनहरे पल में, तो वक्त जो है ना फिर से हम वापस लेकर आते हैं, उन्हीं यादों को हम दोबारा फिर से ज़िंदा कर लेते हैं और इन्हीं गीतों के ज़रिए आपको आपके उन खूबसूरत यादों को फिर से जीने पर हम मजबूर कर लेते हैं। तो चलिए जी, ये अगला नगमा स्पेशली हमारे दिल से आपके लिए।

हो सकता है कि आज आपका दिन ज़्यादा हेक्टिक था, हो सकता है कि आज आप कुछ ज़्यादा ही थके हुए हो। अरे मेरी जान, आप फिक्र मत करना, गिनिशा है ना साथ देने के लिए, आपकी इस थकान को दूर भगाने के लिए हम आ गई हैं बिल्कुल। और इन खूबसूरत लम्हों के ज़रिए आई एम गोइंग टू मेक यू ट्रैवल टू टाइम, यस बैक टू मेमोरीज, जहाँ पे आप और आपके उस खूबसूरत पल बिल्कुल जी दोबारा जीने के लिए आप तो बिल्कुल तैयार है। लेकिन गाना कौन सा हम लेकर आए हैं अगला, चलिए खुद ही सुन लीजिए।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: तो चलिए जी, आपको खूबसूरत गीत सुनाते सुनाते वक्त कैसे बीता चला गया हमें पता ही नहीं चला, अंदाजा भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम आपसे वादा करते हैं फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत से सुनहरे पल के शो में। तब तक के लिए गिनीशा को आप इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: This is Radio Marches.
1: Assalamualaikum. Came to Mauritius.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस।

बेटी, ये भारत है या रोम? मंगल, बुध, जुमेरा, जुम्मा।

0: तुम अभी तक हो नीचे, सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे। चांद पे दुनिया पहुंची है, तुम अभी तक हो नीचे, सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे। माफ करो, इंसाफ करो
1: जी,
0: मुश्किल बड़ी आ पड़ी। अरे ना मैं राजा ना वो रानी, वो मेरे पीछे पड़ी। यू
2: आई डोंट नो,
0: यू
1: मैं क्या बोलूं जी,
0: यू टेल मी,
2: आई डोंट नो,
0: यू टेल मी,
1: मैं क्या बोलूं जी।
0: ओ बाप,
2: अल्लाह,
0: दादा जी, मेरी बात तो सुनो
1: बेटे।
0: ओ बाप,
1: पिता जी मेरी बात तो सुनिए,
0: मेरी बात तो सुनो
1: बेटे, मेरी बात तो सुनो।
2: इस तरह भांडों की तरह नाच कर और गवैयों की तरह गा कर ये फैसला नहीं हो सकता। ये फैसला कल अदालत में होगा।
3: रेडियो मॉरिशस
4: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
3: रेडियो मॉरिशस,
4: रेडियो मॉरिशस।